0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: भाई जब बात 90s की हो ना तो छोटी बात तो मुझसे होती ही नहीं है, लाइक सीरियसली वाली। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, वेलकम वेलकम। जी हाँ, उस दिन का सभी को रहता है बेसब्री से इंतजार, जिसको कहते हैं थर्सडे। क्योंकि क्या है ना कि अब थर्सडे को होने लगे हैं वो 3 घंटे जो हमारे फेवरेट वाले होते हैं, जिसका ग्लिम्स आपको बाकी शोज में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। एक 90s वाला गाना आप सुनते हैं, उसके बाद लगता है कि यार एक और चलाओ तो, एक और चलाओ तो, लेकिन ज्यादा हम चला नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने ये बहुत ही स्पेशल शो जो है बिल्कुल 3 घंटे 90s के डेकेड को डेडिकेटेड। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप, एंड ऑफ कोर्स ये आवाज जो आ रही है ये है आपकी 90s वाली अंतरा की, जो ये एंश्योर करती है कि बस अब हम 90s ही जिएंगे, 90s ही पिएंगे, 90s की ही बात और सांसें भी 90s वाली लेंगे। क्योंकि ऐसा लगता है ना इस शो को करते हुए कि एक्चुअली में किसी ने वॉकमैन में या टेप रिकॉर्डर में रिवाइंड का बटन दबा दिया हो और हम करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं 90s के उस दौर पे। एक एक सिचुएशन में मैं जाती हूँ, एक एक मोमेंट्स में हम लोग 90s के टाइम में जाते हैं और वहां पे ऐसा लगता है कि यार सच में मेमोरीज जस्ट केम अलाइव, राइट? 90s के घर याद है। आज के उसमें देखो तो कितने गैजेट्स, स्मार्ट गैजेट्स, ये गैजेट्स, इतने फर्नीचर, इतनी स्टोरेज स्पेस, इतनी फैंसी चीजें, पर फिर भी जो है चीजें कम थी 90s में डेफिनेटली, पर उनके साथ इतनी मेमोरीज अटैच। एंड एक्चुअली चीजें कम भी नहीं थी 90s में, तो आई थिंक मुझे लगता है चीजें बटोरने का और बटोर के उसको संजो के रखने का जो एक चलता था वो आज तक चलता हुआ आया है। एंड आई डोंट थिंक सो इट इज गोना गो एनी वेयर कि आज से इतने साल बाद भी व्हेन आई सी माय पैनासोनिक या उसका वॉकमैन आई एम लाइक ओ माय गॉड, वैसे रखा क्यों हुआ है, ये सवाल ज्यादा आता है। बट देन खुशी भी उतनी ज्यादा देख के उसको होती है कि यार एक टाइम था कि वो वॉकमैन वाज it was not like non-detachable part of me। कान में जो है वो वायर वाला ईयरफोन्स हेडफोन्स टाइप के होते थे और वॉकमैन होता था, एंड पूरा टाइम इट यूज टू बी लाइक दैट। आज जब मैं इतने एडवांस टाइप का जो है हेडफोन्स वगैरह पहन के घूमती हूँ, इट समटाइम्स रिमाइंड्स मी ऑफ दोज टाइम्स। बट देन मुश्किल था वो वक्त, काफ़ी चीज संजो के चीज़ें ले के रखनी पड़ती थी। आजकल कितना सब कॉम्पैक्ट हो गया है ना, कसेट्स याद है कितना, हर चीज़ में हर जगह पे कसेट्स कैरी करने होते थे। देखिए मैं एक बार शुरू हो जाती हूँ ना यहाँ पे तो मुझे रोकना मुश्किल हो जाता है। एक काम करते हैं, बीच बीच में 90s वाला म्यूजिकल ब्रेक एज यूजुअल लेते रहते हैं एंड वापस आकर बात करते हैं उन्हीं 90s के खूबसूरत दिनों की ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशन हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द

तगड़ा बाबा, यहाँ किलौनी वावा, यहाँ का डांडिया बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट

जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन
1: हमारा,
0: ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: हाँ जी, हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे कसेट्स के पास। ऑफ कोर्स मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हैं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। अंतरा आपके यहाँ पे साथ है और अंतरा बात कर रही है कि कैसे 90s का वो टाइम था, क्योंकि हम कसेट्स की बात कर रहे हैं। तो वॉकमैन में तो हम लोग को जैसे कहीं ट्रैवल करना है, ट्रेन में जाना है या फिर इनफैक्ट गाड़ी में भी जाना है, सो वेर एवर वी आर गोइंग, ओके, अब हमें एक बड़ी जिम्मेदारी ये करनी है कि कसेट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। एंड वी हैड टू कैरी लाइक, एक तो चूज करना मुश्किल हो जाता है, राइट? या तो आपके पास इतने सारे मिक्स टेप्स हो, बना के आपने रखे हो, कि अलग अलग फ्लेवर और तरह के

साथ में प्रेस करते हो तो वो एक साथ ही ऐसे फास्ट में, या प्ले और फॉरवर्ड वाला बटन जो है वो साथ में प्रेस करते हो करते हुए आगे बढ़ जाता है. एंड वेर एवर लाइक हमें अपने आप में वो स्किल सेट डेवलप करना पड़ा कि ये यहाँ पे होगा, ये बस ख़त्म होने वाला है. या फिर जैसे ही गाना खत्म होता है, दूसरा गाना शुरू होने से पहले देयर इज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, राइट? इफ आई हैव रीच्ड देयर व्हिच मींस द नेक्स्ट गाना इज अबाउट टू स्टार्ट माय डियर फ्रेंड. एंड साथ में रहता था रेफरेंस मैनुअल हमारा, क्योंकि कैसेट के अंदर आधी से ज्यादा चीजें तो उसी में पता चल जाती थी. देखिए, एक तो उसके डिजाइनिंग भी इतनी खूबसूरती से किया जाता था कि आपने जो है हीरो हीरोइन का जो है वो फ्रंट पेज पे जो कैसेट के बाहर की तरफ से दिखता है, लेकिन दैट इज नॉट ऑल, इट इज लाइक अ बुक इनसाइड. क्योंकि ए साइड और बी साइड में कौन कौन से गाने हैं, गाने के टाइटल का नाम, उसके नीचे जो है सिंगर्स का नाम, ये होता था. बट अगेन दिस इज नॉट द एंड, देयर वर इनफैक्ट कैसेट्स जहां पे अंदर लिरिक्स भी गाने के दिए होते थे. बाय गॉड की कसम, क्या आज हम लोग नहीं गाते हैं कैरियोके वगैरह में, यू नो, हम जाते हैं और हम निकालते हैं ट्रैक के साथ साथ, हमें दिखना चाहिए, हम साथ में गाना चाहते हैं. तब का कैरियोके ये था, आई मीन इट वॉज जस्ट द बेस्ट, इट वॉज सो अच्छा. खराब भी ये गैजेट्स इसी वजह से होते थे क्योंकि हमने ये अतरंगी तरीके निकाल रखे थे कि कैसे इसको फॉरवर्ड और रिवाइंड करना है, सो दैट वी नो दैट, क्योंकि आवाज़ आती रहनी चाहिए. हमारा कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग चल रहा है वहाँ पर. बट वेल, बड़ा जब थोड़ा सा वक्त और बढ़ा तो हम लोग कसत से सीडी प्लेयर पे आ गए. ठीक है, अब उसका भी तो यही है ना, पहले हम कसत ले लेके घूमते थे क्योंकि मुझे तो चूज़ करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कौन सी लूँ कौन सी, क्योंकि हर एल्बम में मुझे कुछ ना कुछ कोई ना कोई गाना पसंद ही होता था. तो माई वन बैग यूज टू बी ओनली ऑफ कैसेट्स, जिसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ती थी. एंड देन आते थे जब सीडीज में, तो वो सीडीज के पूरे मोटे मोटे पैकेजेस जो है आते थे, और उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट में आप अंदर बहुत सारे सीडीज रख सकते हो. बट सीडीज इतना चला भी नहीं, यू नो व्हाई, बिकॉज ऑफ द स्क्रैच इशू. ठीक है, एक स्क्रैच आया नहीं और हो गया, बस आपकी सीडी तो फिर वो अटकेगी ही अटकेगी, एंड दैट यूज टू बी सुपर डुपर इरिटेटिंग. 90s की बातें सिर्फ 90s वाली यात्रा के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्सटेप.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
4: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musty Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Musty 24/7.
5: Pencil se cassette ki reel suljhana. Crush ka naam haat pe likhkar hai sharmana. ऐसा था 90s का जमाना. ये है मस्ती 90s मिक्स टेप, जाने जाना.
6: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रब के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप में. आई एम श्योर आपको बिल्कुल बिल्कुल ये 90s वाला जो है बातें सुनते हुए काफी मजा आ रहा होगा. 90s के घरों में एक पोजीशन काफी पावरफुल होती थी. ना प्रिंसिपल, हेड ऑफ द फैमिली, बॉस, नो, टीवी रिमोट वाला इंसान. और हर घर में एक पर्सन तो फिक्स होता ही होता था जिसके हाथ में रिमोट परमानेंटली होता था. पापा. और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते तो ताऊ जी या दादाजी या फिर आपके एल्डर सिबलिंग, जो खुद को टेक्नीशियन ही समझते थे कि नहीं मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, बस उसी को कह के हमारे हाथ से वो रिमोट फिसल फिसल के निकल के जाते थे. और टीवी देखते वक्त एक पैटर्न आई थिंक ऑलमोस्ट हर घर में 90s के टाइम में सेम ही था. सीरियल चल रहा है, वॉल्यूम परफेक्ट है, मूवी चल रहा है, सब मस्त अच्छा देख रहे हैं, फिर अचानक से आता है एड ब्रेक और उसी का सेकेंड रिएक्शन की अच्छा चलो वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर. अरे भाई क्यों. फॉर पीपल लाइक मी, जिनको एड ब्रेक देखना इतना ज्यादा पसंद था, जितनी शिद्दत से मैं बाकी चीजें देखती थी उतनी ही शिद्दत से मैं एड ब्रेक भी इंजॉय करती थी, क्योंकि मुझे बड़ा ही क्यूरियोसिटी के बारे में बोल रही, कैसे कर देते यार, कितना अच्छा लगता है, कैसे बनाते होंगे. ये सारे सवाल जो है वो सोचने लगती थी. सो बट एनीवेज, बट ये तो जरूर था कि ऐड आ रहा है तो वॉल्यूम कम कर दो. ऑटोमेटिकली ये चीजें हो जाती थी, जैसे एड पर्सनली यू नो हमारे बड़ों को इरिटेट करने के लिए आ रहे हो. एंड द फनी थिंग, ऐड का वॉल्यूम सच में थोड़ा लाउड होता भी था, इफ यू ट्राई एंड रिमेंबर, राइट. सो रिमोट वाला पर्सन इंस्टेंटली बटन प्रेस करता था और पूरे घर को एक राहत के जैसे एकदम फील हो जाती थी, फिर सब इधर उधर हो जाते थे बिफोर इट यूज टू स्टार्ट अगेन. फिर जैसे ही शुरू हुआ तो फिर वॉल्यूम वापस उस पर पड़ा और पूरा टीवी का एक्सपीरियंस मैनुअली ऑपरेटेड. और वो रिमोट भी सिंपल थोड़ी ना होता था, कभी उसका बैक कवर मिसिंग है, कभी उसके सेल्स लूज हो रहे हैं, कभी उसको ठाप ठाप थप्पड़ मार रहे हैं चालू करने के लिए. हाँ, पहले टीवी को थप्पड़ मारते थे कि उसका सिग्नल ठीक हो जाए, उसके बाद फिर हमारे रिमोट्स आए, उसको हमने थप्पड़ मारना शुरू किया, आप चल क्यों नहीं रहा है. फॉर सम रीजन ये मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है. ठीक है, होता क्या था कि बैटरी हो जाती थी लो, और हम थे मिडिल क्लास फैमिली के, जब तक आखिरी कण ऑफ उसमें पावर खत्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको पीट पीट के जो है चलाते रहते थे. अब पीटते थे तो बैटरी भी थोड़ी हिल जाती थी, उसके बाद फिर वो आ जाता था. तो हमने लॉजिक वहीं से निकाल लिया, करना क्या है, पीट दो, उसके बाद अपने आप ठीक से काम करना लगेगा. आई थिंक 90s के पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसा ही अपने बच्चों के साथ सोचा होगा, उन्होंने भी यही लॉजिक लगाया ना कि पीट दो सही हो जाएगा. एकदम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, या कंटिन्यू टू बी विथ मी, यू विल हैव द मोस्ट अमेजिंग टाइम ऑफ योर लाइफ राइट हियर राइट नाउ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

थोड़ा सा चीनी मिलेगा, थोड़ा सा नमक, हाँ बेसन है क्या आपके पास? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s के घरों में चलते हैं, जब कभी भी 90s के टाइम पर, बाय द वे ये मस्ती 90s मिक्स टेप, जब भी किसी के घर में कोई फंक्शन होता था ना, तो गेस्ट लिस्ट से भी पहले तैयारी ये की जाती थी, ना ना खाने की नहीं, कि मेहमान इतने आएंगे घर में चेयर्स कितनी है, है ना। बर्थडे हो, पूजा हो, रिश्तेदार आ रहे हो ज्यादा, सडनली वो रियलाइजेशन आती थी कि बैठेंगे कहाँ सब कोई। एंड उसके बाद जो सबसे नॉर्मल वाली लाइन होती थी कि अरे वो चैटर्जी के घर में जाकर कुर्सियां ले आओ, या शर्मा जी के घर में जाकर जो है वो कुर्सियां ले आओ, उनसे बोल दो कि हमें चाहिए, हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। बस कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, कोई हेजिटेशन नहीं था, सीधा जाकर और घर के सबसे छोटे बच्चों को भेजा जाता था यही सब कामों के लिए, कि जाओ आंटी से बोलो कि 5 प्लास्टिक की चेयरें जो है वो उनके घर में जो है वो मिल जाएगी कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर यूज टू बी हाँ हाँ लेकर जाओ, एंड वो क्लासिक प्लास्टिक चेयर्स, ओके वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, द रेड, द ग्रीन, द ऑफ वाइट कलर वाली, थोड़ी हिली हुई, आवाज करती हुई, पर हर इंडियन फंक्शन का बैकबोन, बेस्ट पार्ट, हर चेयर के नीचे किसी और का नाम मार्कर से लिखा हुआ होता था। और ये ना जानबूझ के करो, इट्स लाइक वो वाली चीज़ हो जाती है ना कि अब हमारा सामान है तो हमने अपना नाम जो है उसमें लिख दिया है, एंड बेसिकली हम बच्चों का काम होता था कि उस चेयर को लाएगा कौन, बड़े तो नहीं लाएंगे, तुमको भेजा है तुम लेकर आओगे। मैं और मेरा भाई ऐसे लाते हुए लाते थे, सो कभी एक हाथ, एंड स्टाइल क्या होता था, क्योंकि ये प्लास्टिक वाली चेयर ना एक के ऊपर एक आप डाल कर ना ला सकते थे, तो मतलब हमारे में तो कॉम्पिटिशन नहीं था कि किसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अब मैं आज की डेट में रियलाइज़ करती हूँ कि बहुत पहले से 90s में शायद शुरू हो गई थी, मतलब उसके ऊपर चेयर पे कौन ज़्यादा चेयर्स लेकर उठाकर जा सकता है। या और वह मम्मी की आवाज़ें भी आती थी पीछे से, यार गिराना मत। अच्छा, ट्रस्ट इशूज़ हमारे इतने ज़्यादा इसलिए भी हो रखे हैं कि अगर तो चोट लगी तुम वापस आओ फिर बताऊंगी मैं, कहीं चोट लगी वापस आओ बताऊंगी मैं, हम क्या करें, जाए कहाँ। बट वेल सच्ची में 90s का जो ये नेबरहुड था वो काफ़ी अलग था, लोग सिर्फ पास ही नहीं रहते थे, कनेक्टेड भी काफ़ी रहते थे, कि कुछ भी चाहिए जो है पड़ोसी ज़रूर काम आ जाए, पड़ोसी तो ही पड़ोसी के काम आता है, ये आई थिंक वहीं से आया है। आज RSVP का कल्चर है, इवेंट के रेंटल्स है, परफेक्ट प्लानिंग होती है, तब जुगाड़ था यार, पर वार्म्थ जो है वो आई थिंक फुल ऑन थी, आपको नहीं लगता? कुछ याद आया आपको 90s के नेबरहुड वाला कोई किस्सा? 9158963 पर जरूर मुझे बताएं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल टाइम हो चुका है एक 90s वाले म्यूजिकल ब्रेक का।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, मस्ती 90s mixtape with आपकी 90s वाली अंतरा, Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: भाई 90s में प्लेलिस्ट बनाना कोई ऐसा आम काम थोड़ी ना था, बहुत ही मेहनत लगती थी। पूरा प्रोजेक्ट जो है वो होता था, फुल डेडिकेशन वाला। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। आज कम हम क्या करते हैं, क्रिएट प्लेलिस्ट करते हैं, या हमारे फोन पे है या फिर कहीं पर भी है, एक टैप से सब कुछ हो जाता है। तब हम कसेट को पर्सनली क्यूरेट किया करते थे, इतनी शिद्दत जाती थी, इतना पैशन जाता था उसके अंदर। सो ब्लैंक कैसेट एक तो खरीदी जाती थी सबसे पहले, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर वाली, अंदर वो छोटा सा वाइट कलर का लेबल, और फिर स्टार्ट होता था सबसे इंपॉर्टेंट काम कि इस कैसेट को यानी कि इस मिक्स टेप को नाम क्या दिया जाएगा। स्केच पेन निकालो, वो 12 वाली जो आती है सस्ता सुंदर टिकाऊ, ठीक है, और जो हमेशा खो जाती है। मतलब कभी ऐसा, मतलब मेरे घर में तो मैंने तो नहीं ही देखा है, क्योंकि मैं बहुत ही हम लोग अच्छे बच्चे थे, तो उसमें से कभी ना कभी कुछ ना कुछ गायब ही रहता था कोई कलर। सो अब नाम क्या लिखना है, स्केच पेन निकालो, फुल एटीट्यूड के साथ लिखो, सैड सॉन्ग्स, डांस मिक्स, कुमार सानू हिट्स, ओके, इंग्लिश हिट्स, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 3, या और हैंड राइटिंग जो है फुल अर्न एकदम। इसमें तो भाई मैं तो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, और साथ में ड्राइंग भी जो है कई सारे लोग करते थे मेरे जैसे, जो हार्ट्स बना दिए, डिफरेंट कलर्स यूज कर लिए, कभी डबल बॉर्डर डाल दिया, कुछ कर दिया। फिर एक्चुअल रिकॉर्डिंग का प्रोसेस, ठीक है, आप या तो टेप टू टेप कर रहे हो, ठीक है, फिर वो रिकॉर्ड और प्ले पे जो है रख दो, एकदम ऐसे अब आएगा वो मोमेंट, वैसा वाला एकदम हम लोग तैयार रहते थे कि रेडी स्टडी गो। ओह गॉड, और वी हैड टू मेक श्योर, ओके, कि एकदम स्टार्टिंग से हो। अगर आप रेडियो से कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते थे तो हमें तब इंतज़ार होता था कि हमें एक्चुअली में हमें अनाउंसर की आवाज़ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ गाना चाहिए, क्योंकि कैसेट में लिमिटेड जगह है, राइट, तो जैसे वो बोलना मत करता था तो हम लोग वहाँ पे प्रेस किया करते थे। नहीं, याद नहीं आया। एंड हर कैसेट का भी मूड अलग हुआ करता था, है ना, जिस तरह के गाने उसमें। एंड इवन बिफोर दैट यू हैड टू थिंक कि कौन कौन से वो गाने हैं जो आपको इस वाले मिक्स टेप में डालने हैं, राइट। अभी क्या है कि आजकल कितना, मुझे एक्चुअली में लगता है आजकल काफ़ी इजी हो गया है बिकॉज ऑफ AI। अगर आपने कोई गाना एक सुना तो अगला गाना भी AI आपको आपके टेस्ट के हिसाब से ही जो है सजेस्ट करता है। 90s में बॉस अपना टेस्ट खुद आपको पता है, एंड नाउ यू हैव टू गो ऑन द हंट ऑल फॉर यू विद योर सेल्फ। या तो आपको गाने के नाम पता है, या तो आप पिछले 6 महीने से इकट्ठा कर रहे हो, लिखे जा रहे हो कि अब मेरे पास 20-30 गाने हो गए हैं, नाउ आई कैन गो एंड गेट अ मिक्स टेप एंड गेट इट डन। और उसमें भी ना वो मिक्स टेप बनाने का भी हो तो बाद में जो है वो कसट वाले भैया जो है वो आए, उन्होंने करना शुरू किया, बट उससे पहले तो खुद ही सब कर रहे थे ना, तो वो तो मतलब काफी लंबा चौड़ा, कह रही ना, प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आज का प्रोजेक्ट, मतलब अभी अभी के गाने आपके लिए 90s वाले।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
1: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ। मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है, यस। एंड भाई, क्योंकि अब हम घरों में घुस चुके हैं, मिक्स टेप और न जाने क्या क्या चेहरों की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, भाई बात तो होनी चाहिए यहाँ पर उसकी भी जो अनदर जुगाड़ का लेवल। तो देखिए, अभी आजकल क्या है ना कि कभी कुछ गीला हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर आज भी हमारी फर्स्ट वो चीज़ होती है कि अगर पंखे से सूख जाता है तो सूख जाने दो। हालांकि यहाँ पे थिंग्स आर डिफरेंट, यू हैव अ बालकनी एंड यू हैव एन आउटर स्पेस, तो आप बाहर कपड़े जो है बिल्कुल सुखा सकते हो। 90s में जब ये लैंडेड घर हुआ करते थे या फिर ये सारी चीज़ें, तो हम लोग भी बालकनी में कपड़े जरूर सुखाते थे, लेकिन इंस्टेंट रिएक्शन ये होता था कोई भी चीज जैसे बारिश से गीली होकर घर पे अगर एंटर मार चुकी है तो फिर उसको हम सीधा पंखे या कूलर के सामने जाकर उसको इंस्टेंट सुखाने की जो कोशिश है वो की जाती थी। सो 90s का रेनी सीजन जो है सिर्फ बारिश नहीं होता था, सर्वाइवल का चैलेंज भी हुआ करता था ना। एंड स्कूल गोइंग किड्स का तो मतलब, क्योंकि जूते गीले हो जाते थे ना सुबह स्कूल जाते वक्त, तो सब ठीक, पर जब वापस आए तो ऑफ कोर्स द शूज आर कंप्लीटली सोक्ड, रोड पे पडल्स, गंदा हो रखा है, रिक्शा के स्प्लैशेस, स्कूल के ग्राउंड की मिट्टी एंड व्हाइट सॉक्स का कलर ऑफिशियली चेंज। ओके, सो घर आते ही फर्स्ट थिंग भाई शूज निकालो, सीधा जो है पहले तो फैन के नीचे रखो, उसके बाद तो फिर सफाई अभियान जो है उसको शुरू करना पड़ता था। एक शू इधर, एक शू उधर, एंगल जो है परफेक्टली उसको सेट करो ताकि हवा अंदर तक जाए। और वो वेट सॉक्स का ट्रॉमा, ओ माई गॉड, कभी न्यूज़पेपर अंदर उसको भर दे ड्राई करने के लिए, कभी यू नो बालकनी वाला मिशन की उसके बाद, मतलब होता मोस्ट ऑफ द टाइम यह था कि जूते एक पैर ही होते थे, क्योंकि उस टाइम पे बाटा के जूते मिलते थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, ठीक है। अब वो अगर एक पैर आपने ख़राब कर दिए तो आपको दूसरा पैर खरीदना पड़ेगा, विच यूज़ टू बी अ बिग डील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन मिडिल क्लास फैमिलीज, क्योंकि वो मतलब बजट हिल जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स यूज़ टू कम इन टू एक्शन। बट देन या हम उसको पहले यू नो धो धा के कि फटाफट से उसको साफ कर दिया, अब इसको सुखाना है क्योंकि कल सुबह पहन के जाना है। देर आई एम श्योर देर वर डेज वहाँ पे जब 90s में जो बच्चे हैं वो हल्का गीला जूता पहन के भी आए होंगे, या बिकॉज यू नो अब जो डिसिप्लिन है वो है स्कूल में, भाई हमें डायरी में रेड पेन से ऐसा लिखवाना नहीं है, तो फिर बस हमें वो करना पड़ेगा जो हमारे बस में है। भाई कूलर से ज़्यादा जल्दी जो है वो सूख जाता था, बहुत ही फनी लगता था। आप जस्ट इमेजिन करो कि कूलर के सामने बच्चा खड़ा हुआ अपने स्कूल शूज गीले वाले सुखाने के लिए, वहाँ पे ऐसे करके खड़े हुए होते थे, ऐसा लगता है किसी ने हैंड्स अप की जो है ना पनिशमेंट दे दी हो, और सूखेगा। उम्मीद पे पूरी दुनिया हमारी जो है, उम्मीद और जुगाड़ पे दुनिया जो है कायम हुआ करती थी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आई एम श्योर दैट आपको उन दिनों की ज़रूर बिल्कुल याद आती होगी व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ओवर हियर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां चल रहा है मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: Order today from GG Mart, your personal grocer.
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम, गारंटीड। मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: कसर से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: क्या है ये? क्यों याद है मुझे ये? आई हैव नो आइडिया। 222028 क्या है ये? क्यों याद है मुझे ये? कोई बता सकता है क्या है ये? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ओ गॉड सीरियसली, मैं वांट्रा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। एंड यस, 90s की बात हो रही है और 90s की एक चीज जो हमें ऐसा लगता था कि एकदम दिल से, मन से, गट से, आई डोंट नो कहाँ से, बट फोन नंबर्स हमें किस हिसाब से याद है? सो 25686, इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर बट इट एग्जिस्ट इन माय मेमोरीज सो वेरी वेल। मेरे घर के लैंडलाइन का नंबर था 256865। इट्स सो क्लियर, विदाउट एनी हिच आई कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट रिपीट दिस नंबर। 222028 था मेरे डैड के ऑफिस का नंबर। एंड या इसीलिए क्योंकि मैं या कभी कुछ लाना हो, कभी कुछ हो, कभी कुछ उनको बताना हो, तो आई यूज टू एंड दिस इज व्हाट इट इज, राइट? 90s में मेमोरी सिर्फ इमोशन स्टोर करने के लिए नहीं होता था, फोन नंबर्स एकदम फुल ऑन स्टोर करने के लिए होता था, मुझे ऐसा लगता है। इतनी मिनी डायरेक्टरी हम बन बन के घूमते थे यार, कि यू नो मम्मा का कर लिया, बेस्ट फ्रेंड का कर लिया, ट्यूशन टीचर का कभी नहीं किया, पापा का कर लिया। तो आज हम ना कभी, एंड दिस इज सो फनी, देर आर टाइम्स कोई मुझसे मेरा नंबर पूछता है ना, मैं ना 2 सेकेंड के लिए ना वैसा हो जाती हूँ, ब्लैंक हो जाती हूँ। एक मिनट, हाँ क्या था वो? बट या लैंडलाइन डायल करना भी एक प्रोसेस हुआ करता था। रिसीवर उठाओ, डायल टोन पहले सुनो, फिर नंबर को प्रेस करो धीरे धीरे। कभी रोटरी फोन हो तो वो और भी ज्यादा सिनेमैटिक हो जाता था, फिंगर्स घुमा घुमा के, फिर वो व्हील वापस आने का वेट, और अगर एक डिजिट उसमें गलत हो गया, हे भगवान, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। इसीलिए नंबर्स जो है ना प्रॉपरली याद होते थे। एंड फनी थिंग इज, कुछ नंबर्स तो मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े होते थे फिर भी हमें याद। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नॉर्मली कहती हूँ मुझे कोई चीज़ रट्टा नहीं होती है, पता नहीं ये सारी मैं मेरी मेमोरी बहुत वियर्ड है। मैं अब ये पूरी तरह से मुझे विश्वास हो गया है इस बात पर। बट एनीवेज, 90s में कॉन्टैक्ट फोन में सेव कम होते थे, रिलेशनशिप्स आई थिंक दिमाग में सेव ज़्यादा होते थे। किसी का नंबर याद होना मतलब वो बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। कभी इमरजेंसी में डायरी जो है वो ढूंढनी नहीं पड़ती थी, इंस्टेंट डायल कर लिया जाता था। घर में भी एक स्पेशल टेलीफोन की डायरी जो बिल्कुल टेलीफोन के बगल में ही रखी जाती थी, और उसमें यू नो ब्लू इंक से नाम लिखे होते हैं, दे वर क्रॉस्ड आउट ओल्ड नंबर्स, साइड में न्यू नंबर। आजकल इट्स वेरी वेरी ईजी, राइट? सर्च बार है, देन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, बट तब मेमोरी पावर थी यार, एंड इसीलिए कनेक्शन भी थोड़े स्ट्रॉन्गर से लगते थे क्योंकि उन्हें एक्सेस करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगता था। उसी के साथ साथ अगर तो बात हो आपके क्रश की या फिर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नंबर की, देखो याद तो हो जाता था, लेकिन द सिस्टम ऑफ डाइविंग इनटू अ डायरेक्टरी एंड हंटिंग आउट अपने क्रश का नंबर वाज अनदर लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च ऑल टुगेदर। I shall let you know about that in just a while, but Radio Masti 24/7 live par, filhal bane rahiye mere sath.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
2: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
1: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Mahar Rani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi Lunch and Dinner at Shahi Maharani, Raffles City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
3: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
4: Blue fingers just before exams. In fact, I had blue fingers most of the times. Not only fingers, my shirt was almost, there were a lot of blues over there as well. Radio Masti 24/7 live on Trap ke saath Masti 90s mixtape mein bhai 90s ke school ka life ka jo ek permanent color tha, royal blue ink, theek hai? एंड वो जो एग्जाम्स के टाइम पे तो आई थिंक एक मिनी सा स्टेशनरी वर्कशॉप बन जाता था हर किसी का घर। ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो रेडी कर लो, एडमिट कार्ड रेडी कर लो, एक्स्ट्रा निब जो है वो रेडी कर लो, एक्स्ट्रा रीफिल रख लो, एक्स्ट्रा पेंसिल रख लो, और फिर आता था सबसे रिस्की काम, फाउंटेन पेन रीफिल करना। चल पार्क, चल पार्क नाम है उस शीशे की बोतल का जो कि लानी पड़ती थी। इंक बोतल को खोलो और एक वो एक स्मेल सी आती थी, एंड देन उसके बाद पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पेन का एक सेक्शन खोलना, ड्रॉपर या फिर कन्वर्टर को फिल करना, और फिर बस स्प्रे करना कि गिरना नहीं चाहिए। दैट वाज द प्रॉब्लम कि अगर तो गिर गया और लग गया कहीं और पे, गिरता तो था ही वैसे, बट देन फिर भी तो आपके जो है उंगलियों पे इंक, नील के साइड पे इंक, कभी शर्ट पे इंक, कभी टेबल पे, फुल डिजास्टर। उसके बाद तो फिर मम्मी का गुस्सा एंड एवरीथिंग, फिर बाथरूम जाके उसको घिस घिस के साबुन से घिस घिस के जो है वो क्लीन करना, पर वो ब्लू स्टेन 2-3 दिन तक ऑफिशियली जो है वो रहता ही रहता था। फनी थिंग इज दैट स्कूल में हाफ ऑफ द क्लास वॉज इन द सेम कंडीशन, राइट? किसका पेन लीक हुआ, मेरा कन्वर्टर फंस गया था। एंड 90s में राइटिंग स्मूथ नहीं, काफ़ी इन्वॉल्व थी, ठीक है? आज क्लिक करो एंड पेन खोलो और लिख लो, तब राइटिंग से पहले भाई प्रिपरेशन होती थी कि इंक फिल करो, निब चेक करो, रफ पेज पे ट्रायल कर लो घुमा घुमा के। रफ पेज से भी ज़्यादा आई थिंक अगर आप डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर ये सारा काम कर रहे हो तो फोन के पास में रखी हुई वो जो फोन वाली डायरी होती थी उसी में सारे हम लोग चला चला के टेस्ट करते थे कि चल रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्योंकि you know, एफर्ट जो है ना वो काफ़ी विजिबल था 90s में इस तरह से। एंड वो हैंड राइटिंग का ऑब्सेशन भी कि भाई इंक फ्लो अच्छा जो है अगर आ रहा है तो फिर मज़ा ही। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू राइट विद अ फाउंटेन पेन एंड इफ द इंक फ्लो इज वेरी गुड, बहुत सही राइटिंग आती है, एकदम वाली राइटिंग आती है। आज कन्वीनियंस ज्यादा है तब कनेक्शन ज्यादा था स्टेशनरी के साथ भी, और शायद इसीलिए वो ब्लू फिंगर्स आज भी हमें याद है, क्योंकि वो सिर्फ इंक नहीं थे, एग्जाम सीजन का ऑफिशियल एक बैज मान के चलो वैसा फील हुआ करता था। प्रॉब्लम उसके साथ ये भी थी कि धुलने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसी वजह से मम्मी भी कहती थी कि भाई थोड़ा सा संभाल के शर्ट वर्ट पे मत लगाओ क्योंकि ये दाग जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अलग तरीके की मतलब जुगाड़े लगानी पड़ती थी उनको कि कैसे कैसे जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नॉट सिर्फ इंक पेन नहीं, इनफैक्ट बॉल पेन की इंक और ज्यादा जो है वो इट वॉज इवन टफर टू टेक आउट समहाउ, है ना। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यूं ही हम 90s वाली यादें ताजा करते हुए जाएंगे, लेकिन साथ साथ में 90s वाले गाने भी सुनते हुए जाएंगे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: रुकावट के लिए खेद है, कब आएगा, कब वापस आएगा, इसी इंतजार का नाम 90s था मेरे दोस्त। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s के टीवी का वाचिंग एक्सपीरियंस, सबसे इमोशनल विलन कौन कौन था? ना ना, सीरियल की वैम्प नहीं, क्रिकेट का अंपायर नहीं, रुकावट के लिए खेद है। मूवी एंड मैच जो है जब भी एंड समहाउ जब भी अपने पीक पे पहुंचा नहीं और सडनली स्क्रीन हो जाती थी फ्रीज, फिर वो कलर वाले बार्स आते थे या फिर वो स्टैटिक स्क्रीन आती थी जिसको हम स्नो कहते हैं, वो मुझे तो कभी भी नहीं पता था। एंड फिर वो नीचे लाइन आती थी कि रुकावट के लिए खेद है। एंड यू नो इट एक्चुअली मैं ऐसा लगता था जिंदगी थोड़ी देर के लिए एकदम पॉज सी हो गई है, अभी इतना इंपॉर्टेंट सीन था। अच्छा फिर दिमाग में ऐसे आइडियाज आ रहे हैं कि एंटीना जाके चेक करो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, फिर स्टार्ट होता था पूरा फुल ऑपरेशन। कोई बालकनी में एंटीना घुमा रहा है, कोई नीचे से चिल्ला रहा है कि हाँ हाँ अब क्लियर हो गया, अरे अरे रुको रुको, नहीं नहीं नहीं थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, और टीवी के साइड पे वो ऑफकोर्स मैंने कहा ना जब तक ठोको पीटो नहीं तो वो वाली चीज़ भी ट्राई करनी ज़रूरी होती थी, जैसे उससे सिग्नल जो है इमोशनली बेटर फील करने लग जाएगा कि अरे धत पगले तू क्या सोच रहा था कि नहीं चलेगा, एक और लोड पटाक। 90s में एंटरटेनमेंट इजी एक्सेस नहीं था, अर्न्ड एक्सपीरियंस था। मूवी देखनी है पेशेंस चाहिए, क्रिकेट मैच देखना है सिग्नल का कोऑपरेट करना भी उतना जरूरी है। आज बफरिंग पे मतलब 5 सेकंड में हम इरिटेट हो जाते हैं, तब 10 मिनट का इंटरप्शन के बाद भी हम वही उसी एक्साइटमेंट के साथ उसका वेट किया करते थे क्योंकि कंटेंट लिमिटेड था और वैल्यू काफी ज्यादा। एंड ऑनेस्टली वो इंटरप्शन के मोमेंट्स भी काफी काफी यू नो मेमोरी टाइप के बन गए क्योंकि पूरा घर ही उसमें इन्वॉल्व हुआ करता था कि कोई पापा एंटीना के इंस्ट्रक्शन देंगे, बच्चे विंडो पे जाके खड़े हो जाएंगे, मम्मी बोल रही है इतना टीवी देखोगे तो यही होगा। इसीलिए टीवी भी चला गया, वो भी थक गया, फिर सडनली पिक्चर वापस आ जाता है एंड पूरे घर का रिएक्शन जैसे बिजली आ जाती है ना, चलो आ गया। जैसे इंडिया ने खुद का वर्ल्ड कप एक्चुअली में जीत लिया हो उस मोमेंट में। 90s का टीवी एक्सपीरियंस इतना अलाइव लगता था एंड इनफैक्ट अभी भी याद कर रही हूँ तो लगता है क्योंकि उसमें सिर्फ वॉचिंग नहीं थी यार, वेटिंग भी थी। रेडियो वस्ती 24/7 लाइव पर ऐसे ही वॉचिंग एंड वेटिंग, सिर्फ लिसनिंग करनी है आपको और इमेजिन करना है। तो आप ये शो सुनकर आपको लगेगा हमेशा दैट यू आर इन दोज मोमेंट्स ऑफ 90s ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day।
3: कभी आपने अपने क्रश के हाथ से जो है ड्रॉप हुआ, लाइक उसने खाया एक टॉफी या कैंडी और उसने ड्रॉप किया उसका रैपर नीचे, उसको उठा के सहेज के अपने पास एज अ मेमोरी जो है वो रखा हुआ है। इट्स सच अ 90s थिंग। मैं सीरियसली सोचते कैसे मैं एकदम नो ऐसे बटरफ्लाई से जो है वो फील होने लगे हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहे हैं मस्ती 90s में एक स्टेप। एंड दोज आर द डेज राइट व्हेन आपके क्रश या आप जिस किसी को अगर पसंद करते हो उनकी हर एक चीज जो है ना आपको बटरफ्लाइज दिया करती थी। तो ऐसा होता था, ठीक है। तो जैसे कैंडी खाई, नीचे डाल दिया तो वो कैंडी का रैपर उठा लिया। कभी ऐसे ही यू नो गार्डन से कोई शायद उसने पत्ता उठाया होगा, वो पत्ता उसके हाथ से छुआ लेकिन उसके हाथ से छू के वो नीचे गिर गया, वो पत्ता उठा लिया, वो हमने डाल दिया बुक्स के बीच में, सो दैट यू नो कभी वो बुक वापस से खुले और वो सूखा हुआ पत्ता देखे और सूखे हुए पत्ते के साथ हमारी सारी यादों के दरवाजे और उसका चेहरा जो है बिल्कुल सामने आ जाए कि हाय ये तो उसको छू के आया था। हैंकीज राइट, कभी किसी का गिर जाए नीचे फिर वही हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, गाने शुरू हो जाते थे बैकग्राउंड में। बट नॉट ओनली दैट, द पीपल हु वर इन रिलेशनशिप्स, फूल को किताब के बीच में रखना और इस तरह से उसको सजा के एंड एज अ मेमोरी उसको प्रिजर्व करना, सच अ 90s थिंग मैन। लाइक रोमांस का तरीका ही जो है काफी काफी डिफरेंट था क्योंकि इतने मिलने के मौके नहीं मिला करते थे। एंड इट वॉज मोर अबाउट फीलिंग्स देन एनी थिंग एल्स व्हेन वी टॉक अबाउट 90s, कि आंखों आंखों में अगर देख लिया यू नो उधर आंखों आंखों में कुछ बातें हो गई, ठीक है, अगर हल्का सा हाथ भी टच कर गया तो ऐसा लगता था करंट, ओ माय गॉड, करंट का भी अगर कोई हायर वर्जन है, लाइटनिंग थंडरिंग इनसाइड द बॉडी विच यूज टू फील, वी नेवर अंडरस्टूड व्हाट फीलिंग वाज दैट, बट देन बिकॉज वी डिडंट हैव अ नेम टू दैट फीलिंग, हमें लगता था कि यार ये क्या हो गया, क्या ही हो गया। इट वॉज सो एक्साइटिंग राइट, एक ऐसी एकदम अमेजिंग सी फीलिंग हुआ करती थी, ठीक है, कि उसने मेरा नाम ले लिया, लाइक वाओ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ये बातें यूं ही बिल्कुल आप चाहते हो ना। मैं जब भी ये सारी बातें करती हूँ लोग मुझे लिख के मैसेज कर, रुकना मत, नहीं रुकना तो पड़ेगा ना, मैं बोलती थोड़ी ना रहूँगी, ठीक है। 90s वाला ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration. Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Stay Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffles City. Limited seats. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कसल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार्ट पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: अरे वो वाली बात तो रही गई थी जहाँ पे हम लोग डायरेक्टरी में नाम ढूंढ रहे थे, अभी थोड़ा सा रोमांटिक सा माहौल सब बन गया ना, तो फिर मुझे लगा कि वो वाली बात तो करनी फिर से एकदम मूड के हिसाब से होना ही चाहिए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हैं अंतरा के साथ यहाँ पर। भाई क्या है कि अगर आपने किसी का नंबर ढूंढना है तो हमें आती थी वो येलो बुक, यानी कि डायरेक्टरी जो है बिल्कुल हर किसी के घर में पाई जाती थी। अब उसमें से निकालना किसी का नंबर जो है ना, वो डिक्शनरी हो या डायरेक्टरी, भाई बहुत मेहनत लगती थी। इसीलिए आई थिंक सिंसियरिटी इन एनीथिंग वाज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द 90s, बिकॉज यू हैव वर्कड योर वे थ्रू इट। यू गेटिंग माय पॉइंट कि आपने इतनी मेहनत की है, ठीक है भाई। अगर आपने किसी को देखा, उसका नाम आपको पता है, ठीक है, अब उसके नाम से तो होगा नहीं, उसके पापा या मम्मी के नाम से होगा, पहले उसके पापा या मम्मी का नाम निकालो, है ना। जब ये उनका नाम आ जाए तो फिर डायरेक्टरी में जाओ, फिर जाओ। अच्छा कई बार ऐसा होता था कि हमें उन्हें मोहल्ले का पता लगाना पड़ता था कि अगर मोहल्ले का नाम पता चल जाए तो उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं डायरेक्टरी में जाकर कि हमें ये नंबर। अब फिर उसके बाद फिर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो शॉर्टलिस्ट की जाती थी, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होते थे, होते हैं अभी भी, उसको शॉर्टलिस्ट करके अब सारे नंबर एक एक करके डायल करो, है ना। फिर उसके बाद फिर बड़ा ही मुश्किल होता था यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो इट यूज टू बी सच अ वेस्ट। इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, इट इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट व्हेन यू आर इन दैट काइंड ऑफ जोन एंड यू आर इन द 90s, भाई हमारे पास पेशेंस ही पेशेंस है, हम पूरी शिद्दत से और पूरे पैशन के साथ ये सारा जो है प्रोसेस किया करते थे और लगाया, हेलो बोला नहीं, एंड मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा ही या फिर वो बंदी जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो वही फ़ोन उठाए। वो तो आपके सितारे अगर गर्दिश में है तो उठा लिया, अगर नहीं है तो फिर आपने सारे नंबर घुमा लिए। एंड वंस यू गेट दैट नंबर, ओके, द फीलिंग ऑफ दैट अचीवमेंट कि भाई आज तो हमने कुछ अलग ही फोड़ दिया, और जो स्माइल पूरे दिन और वो जो डोपामिन हिट होता था, आप ना खुश हो लाइक फॉर नो रीजन, आप खुशी घूम रहे हो, है ना। बंदे की आवाज़ सुन ली एक बार, भले ही आपने ब्लैंक कॉल करके काट दिया हो, खुश घूम रहे हैं मस्ती में, जोन आउट हो रहे हैं उसकी यादों में कि हाय मैंने तो उसकी आवाज व्हाट। बंदा ठीक है किसी और की बाइक पे बैठा हुआ था, वो वहां से चला गया, आप जाके उसी जगह पे अगर बैठ जाते हो तो मतलब आपकी फीलिंग अलग, रोमांटिक लेवल और थॉट्स जो है काफी रोमांटिक से जो आने लगते हैं, ओ माई गॉड ये यहीं पे बैठा था, उसकी फीलिंग अभी भी यहाँ पे इधर ही हो। डूड ऐसे थोड़ी ना, वो बॉटल झूठा इनडायरेक्ट किस, ऐसे थोड़ी ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं तैयार हुए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, बट आई थिंक आई नीड टू होल्ड ऑन टू माय हॉर्सेस विच आर 90s के साथ साथ काफ़ी जोर से दौड़ रहे हैं, और चलते हैं गानों की तरफ।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
4: रेडियो मस्ती 24/7। डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं अंतरा, गाओ मत अंतरा। आई नो अब लास्ट है, सबको जाना है, इसका भी थोड़ी ना कि मैं ऐसे शुरू हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं समझती हूँ, मैं अपने आप से बात करती रहती हूँ, कंट्रोल किया मैंने अपने आप को। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे थे। लेकिन अब क्या है ना कि या 90s के शोज की तरह इस शो को भी और मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। बाय द वे, इफ यू हैव नॉट रियलाइज्ड, भाई इस शो का ऑनकोर भी आता है। लेट मी जस्ट काइंड ऑफ टेल यू दैट इसका शो का ऑनकोर आता है हमारे सैटरडे जो है मॉर्निंग 8 बजे। सो जस्ट इन केस आपको लगता है कि आपने ये मिस कर दिया हो, ठीक है, मैं अपना शो ही सुनती हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ सुनते हुए, बिकॉज इफ यू आर डूइंग समथिंग समटाइम्स यू नो पीपल जस्ट लिसन टू इट ऑन रिपीट ओनली, बिकॉज गाने यार अच्छे ही लगते हैं यार। कितनी बार भी इन गानों को सुन लो, एक हफ्ते में दो बार तीन बार भी सुन लो, दे आर नॉट गोइंग टू फेड अवे फॉर अ वेरी वेरी गुड लॉन्ग टाइम, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट दे डोंट फेड अवे, बिकॉज दैट इज माई पैशन टूवर्ड्स दिस होल जो है शो मस्ती 90s मिक्स टेप। सो वेल, मुझे फिलहाल दो इजाजत, एंड एक और नायाब सा जो है एपिसोड फ्रेम करके और बना के क्यूरेट करके आपके लिए बिल्कुल स्पेशली लेके आऊंगी। वापस से चलेंगे 90s के गलियारों में। बट द खूबसूरत बात अबाउट दिस शो इज दैट पता है कि इसका इफेक्ट काफ़ी काफ़ी टाइम तक रहेगा। आज तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन आने वाले दो तीन दिनों में और भी ज़्यादा रहेगा। सो इसको इन्जॉय करिए, हर वो याद को इन्जॉय करिए, एंड हर उस याद के साथ वो जो स्माइल आती है ना, वही स्माइल बरकरार रखे हमेशा। दैट्स व्हाट आई विश फॉर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, यू हैव अ फैंटास्टिक डे।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं कब से आ चुका हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलिए अच्छा हुआ आप भी आ गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया ना। लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां। तो सिंगापुरी चाय की चुस्की लीजिए और सुनिए मुझे। आज हम आपको ले चलेंगे 1975 के साल से। जी, आज का कारवां वहीं से गुजरेगा और उस साल रिलीज हुई फिल्मों की कहानियां, उनके पीछे की, पर्दे के पीछे की कहानियां आपको सुनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम वही है जिसका डायलॉग अभी मैंने आपको सुनाया, दीवार। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम हिंदी सिनेमा की टॉप 25 फिल्म्स में आता है। सिंगापुर, ये फिल्म एक्चुअली उस वक्त के पॉलिटिकल और सोशल जो एनवायरनमेंट था उसको देखते हुए लिखी गई। उस जमाने की स्टार स्क्रिप्ट राइटर जोड़ी सलीम जावेद की कलम से ये कहानी निकली और ये उस साल की चौथी सबसे बड़ी हिट बन गई। हालांकि ये फिल्म दिलीप कुमार साहब की गंगा जमुना और मदर इंडिया के दो भाइयों के बीच की कहानी से इंस्पायर्ड थी, लेकिन वो दोनों फिल्में गांव पर बेस्ड थी। पर इसमें सलीम जावेद ने इसे थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से दिखाया है। यश चोपड़ा साहब ने इसे डायरेक्ट किया और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के साथ उनके भाई बने शशि कपूर। फिल्म में अमिताभ बच्चन बड़े भाई हैं और निरूपा रॉय उनकी माँ बनती हैं और नीतू कपूर हैं हीरोइन और परवीन बाबी अमिताभ बच्चन साहब के साथ। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि अमिताभ बच्चन साहब के पिताजी, जो एक ईमानदार आदमी हैं, ट्रेड यूनियन के नेता हैं, वो अपनी ईमानदारी की कीमत चुकाते हैं। यानी कि एक हड़ताल को लीड करते हुए वो अपने ही साथियों की साजिश का शिकार हो जाते हैं, उन्हें धोखा मिलता है और उन्हें चोर घोषित कर दिया जाता है, जिससे वो सदमे में चले जाते हैं। इसी दरमियान मोहल्ले के लोग अमिताभ बच्चन यानी विजय, जब वो छोटे होते हैं तो उनके हाथ पर लिख देते हैं, मेरा बाप चोर है। और यहीं से विजय की सोच समाज और लोगों के लिए बदल जाती है, वो नास्तिक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई रवि यानी शशि कपूर उसूलों वाले हैं, भगवान में विश्वास रखने वाले, और इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती रहती है। बड़ी ही मजेदार कहानी है, बड़ी कसी हुई फिल्म है ये। और इस फिल्म का एक गाना जो बड़ा हिट हुआ था वो था, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, साहिर साहब का लिखा हुआ गाना जिसे आरडी बर्मन ने कंपोज किया था। लेकिन लेकिन लेकिन इस फिल्म की जो सबसे बेहतरीन चीज है वो आपको भाएगी भी, वो है इस फिल्म के दमदार डायलॉग्स। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? भाई, मेरे पास माँ है जो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सुनती है, मस्त रहती है। आप भी सुनते रहिए, मस्त रहिए, मस्ती करते रहिए। और जब मैं लौटूंगा तो एक और फिल्म का जिक्र करूंगा, वो कौन सी होगी आने पर ही पता लगेगा। सुनते रहिएगा यादों का कारवां, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ।

0: टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi Lunch and Dinner at Shahi Maharani, Raffles City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
4: वेलकम बैक सिंगापुर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर। और आज इस कारवां में चल रही है 1975 की फिल्मों की बातें, प्रेम कहानी उस जमाने की यानी लव स्टोरी। और लव स्टोरी का जिक्र हो और राजेश खन्ना साहब का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता साहब। भाई राजेश खन्ना साहब नोन टू बी बॉलीवुड्स किंग ऑफ रोमांस, और उनके साथ अगर मुमताज हो तो एक हिट फिल्म बन जाती थी। और वो फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो थी प्रेम कहानी। जी, लिखी और डायरेक्ट की थी राज खोसला साहब ने, और शशि कपूर और विनोद खन्ना भी थे इस फिल्म में। विनोद खन्ना शेर खान के रोल में थे और शशि कपूर राजेश खन्ना साहब के दोस्त बनते हैं। साथ ही यूनुस परवेज भी थे, वो एक पुलिस वाले बने। तो ये एक, वैसे शशि कपूर साहब भी SP बनते हैं, और ये बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। हालांकि बड़ी ही मेलोड्रामेटिक फिल्म है ये, मैंने देखी और मुझे बहुत कमाल की लगी, मतलब हंसी भी आई कि देखिए उस जमाने में इस तरह की फिल्में बनती भी थी और चलती भी थी। लेकिन देखिए अपने अपने वक्त की बात है, उस समय लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। राजेश खन्ना साहब की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में इसका भी नाम जुड़ गया। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन का दौर था, वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना का रोमांटिक स्टारडम अभी भी चल रहा था। ये फिल्म एक, जैसे कि मैंने कहा कि मेलोड्रामेटिक हिंदी फिल्म की स्टोरी की तरह है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि दो लोग प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि लड़की की शादी किसी और से हो जाती है, उसे करनी पड़ती है बेसिकली। और फिल्म में राजेश खन्ना एक्चुअली एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके साथ उनके एक बड़े भाई हैं और एक भाभी भी हैं। बड़ा भाई फ्रीडम फाइटर है, राजेश खन्ना थोड़े से पोएटिक मिजाज के आदमी हैं। राजेश खन्ना साहब जब कॉलेज में जाया करते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती है मुमताज से, और धीरे धीरे उनमें प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो फिल्मों में गाने आते हैं। तो दो गाने आपको ऐसे वक्त में देखने को मिलेंगे जो फिल्म को और भी खूबसूरत बना देते हैं। एक तो राजेश खन्ना साहब हों और हसीन मुमताज हों और गाने हिट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक गाना है प्रेम कहानी में, एक लड़का होता है एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं कभी दोनों रोते हैं। और दूसरा, दोनों किसी को नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जाए। बताने की जरूरत है कि गाने किसने लिखे होंगे। जी, आनंद बख्शी साहब ने। बहुत ही सिंपल लिखते थे लेकिन बहुत ही हिट हो जाया करते थे उनके गाने। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक, भाई ये तिकड़ी ही तो कमाल थी, मतलब मैं इसे चौकड़ी कहूंगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दो लोग हो गए और आनंद बख्शी के साथ राजेश खन्ना साहब, तो ये जो चौकड़ी थी कमाल कर रही थी उन दिनों में। अच्छा, फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होती है कि इधर अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान उनके बड़े भाई यानी राजेश खन्ना साहब के बड़े भाई की मौत हो जाती है। भाई की मौत के बाद राजेश खन्ना कसम खाते हैं कि वो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा कर ही मानेंगे। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब राजेश खन्ना मुमताज को समझाते हैं कि वो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जान अब देश की है और वो शादी करके उन्हें विधवा नहीं करना चाहते। बहरहाल राजेश खन्ना फौज में चले जाते हैं। उधर मुमताज अपने पिता के पसंद के लड़के यानी शशि कपूर साहब से शादी कर लेती हैं। हालांकि राजेश खन्ना और शशि कपूर पहले से दोस्त हैं। कुछ सालों के बाद शशि कपूर को दोनों की मोहब्बत के बारे में पता चलता है, और क्लाइमेक्स इसका बड़ा कमाल का है। भाई प्रेम त्रिकोण है ये, तो इसमें जब तक एक कोण खत्म नहीं होगा तब तक प्रेम कहानी सीधी कैसे चलेगी। तो ऐसे में राजेश खन्ना साहब को मरना पड़ता है, और मारता कौन है? कामिनी। कामिनी कौन है? अरे मुमताज जी। कुछ ऐसा करते हैं राजेश खन्ना साहब की मुमताज उन पर गोली चला देती हैं और फिर एक कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बहुत ही भारी भारी सा एंड है। लेकिन ये तो रेडियो मस्ती भाई, तो रेडियो मस्ती पर आपको बढ़िया मस्त गाने सुनाना मेरा काम है। कहानी मैंने आपको सुना दी प्रेम कहानी की, अभी सुनते हैं इसी फिल्म से ये गानी। लौटूंगा एक और फिल्म का जिक्र करने के लिए। आप सुनते रहेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।
1: मैं तुझे प्यार

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

0: पल।
1: जी हाँ, जिंदगी सिर्फ दो पल की होती है और इस पल दो पल की जिंदगी को हमें एकदम जॉली तरीके से जीना चाहिए। इसीलिए तो रेडियो मसी 24/7 लाइव का मोटो यही है कि आपकी जिंदगी में हम मस्ती भर दें। सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां और आज 1975 के साल से गुजर रहा है ये कारवां। मैं हूँ समर आपके साथ उस दौरान की फिल्मों का जिक्र लेकर। तो एक और फिल्म आई थी साहब इस साल दीवार के बाद, अमिताभ बच्चन साहब की दूसरी सुपरहिट फिल्म जमीर इसका नाम था। तो दीवार तो साहब बनाई यश चोपड़ा साहब ने, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बलदेव राज चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा ने जमीर को डायरेक्ट किया और ये इन्हीं के प्रोडक्शन में बनी फिल्म थी। वैसे ये फिल्म 1960 में आई देवानंद साहब की फिल्म बम्बई का बाबू का रीमेक कही जा सकती है। अमिताभ बच्चन इसमें बादल के किरदार में थे, उनके साथ शम्मी कपूर थे, सायरा बानो जो उनकी बेटी बनती हैं, और हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े विलन अमरीश पुरी साहब के बड़े भाई मदन पुरी भी थे इस फिल्म में, जो एक विलन यानी डाकू बनते हैं, और विनोद खन्ना भी थे जिनका स्पेशल अपीयरेंस रहता है इस फिल्म में। एक मजेदार बात बताता हूं आपको मैं कि फिल्म जंगली से सायरा बानो ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया जिसमें शम्मी कपूर लीड हीरो थे और यहां शम्मी कपूर सायरा बानो के पिताजी बने हैं। खैर होता है जी होता है, ऐसा भी होता है। शम्मी कपूर एक आलिशान फार्म हाउस में रहते हैं अपनी बीवी और बेटी और अपने बेटे चिंपू के साथ। एक दिन डाकू मोहन सिंह हमला करता है इनके फार्म हाउस पर, लेकिन शम्मी कपूर यानी ठाकुर महाराज सिंह उनका डटकर मुकाबला करते हैं और डाकू के बेटे को मार देते हैं। वही डाकू मोहन सिंह अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए चिंपू को उठाकर ले जाता है। कुछ सालों के बाद जब वो घर लौट कर आता है तो नौकर राम सिंह एक जवान लड़के बादल यानी अमिताभ बच्चन को लेकर आते हैं और ठाकुर महाराज से कहते हैं कि यही वो लड़का है जिसे डाकू उठा ले गए थे, आपका बेटा ये। सारे घर वाले उसे बेटा मानने लग जाते हैं। वहीं धीरे धीरे बादल और सुनीता यानी सायरा बानो में प्यार होने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद बादल महाराज से कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ लाया गया है। ये सब जानते हुए भी महाराज घर वालों को सच नहीं बताना चाहते हैं ताकि उनकी फैमिली खुश रहे। ऐसी ही कश्मकश चलती रहती है फिल्म में। आप देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा क्योंकि इस फिल्म के टाइटल जमीर को दिखाया गया है। जमीर जब जागता है तब क्या होता है। मजेदार स्टोरी के साथ इस फिल्म के गाने भी मजेदार हैं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, ये इसी फिल्म का गाना है जो फिल्म के कंटेंट को शो करता है। ये एक हैप्पी सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग भी है। वो कौन सा है जी? तुम भी चलो हम भी चलें, साहिर साहब के बोल गानों में और सपन चक्रवर्ती का म्यूजिक। वेल, अभी तो बहुत सारी फिल्में बाकी हैं मेरे दोस्त, तो एक गाना सुन लीजिए। तब तक मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक और मूवी का किस्सा। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक सिंगापुर। कैसा चल रहा है ये कारवां? हैं बेटे जानी, आज हम 1975 की फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। मेरा नाम है समर। भाई बेटे जानी तो ऐसे कह दिया, मुझे प्राण साहब याद आ गए। ये दौर उनका भी दौर था। इस वक्त वो कैरेक्टर रोल्स के साथ कॉमेडी रोल्स भी कर रहे थे। वेल चलिए, अब हम बेस्ट कॉमेडीज की बात करें इस साल की, तो उनमें से एक फिल्म थी, बल्कि मैं तो कहूंगा ऑल टाइम बेस्ट कॉमेडीज में से एक है ये, चुपके चुपके है इसका नाम। इस फिल्म के बिना कॉमिक फिल्मों की फेहरिस्त अधूरी ही रह जाएगी। ऋषिकेश मुखर्जी द ग्रेट डायरेक्टर ऑफ सिनेमा अलग तरह की फिल्में बनाते थे। न्यू वेव सिनेमा था उनका, एक अलग तरह का न्यू वेव। मतलब एक तो होती थी आर्ट फिल्म, जो हम जैसे बच्चों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो जो बनाते थे वो ह्यूमर रियलिस्टिक फिल्म हुआ करती थी। मतलब ऐसा लगता था कि हाँ, ये हमने शायद पड़ोस में ऐसा कुछ देखा है। तो ये उनकी खासियत थी। और उनकी फिल्में देखते ही या उनके जैसी फिल्में देखते ही लोग कहते थे, अरे भैया ये तो ऋषिकेश मुखर्जी टाइप की फिल्म है। उनकी ज्यादातर फिल्में फैमिली ड्रामा होती थी। तो जी 11 अप्रैल 1975 को चुपके चुपके चुपचाप रिलीज हो गई। एंड इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे गुलजार साहब ने, जो उस टाइम उनके असिस्टेंट हुआ करते थे ऋषिदा के। ये मूवी बंगाली फिल्म चादमा बेशी का रीमेक थी। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, ओम प्रकाश, असरानी और जया बच्चन थे इस फिल्म में। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन साहब की कॉमेडी टाइमिंग की बहुत तारीफ हुई थी इस फिल्म में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि धर्म पाजी बाजी मार गए साहब। और बाकी का काम करने के लिए असरानी और ओम प्रकाश तो थे ही, उनका कोई मुकाबला है क्या कॉमेडी में? कमाल गए वो दोनों। असरानी ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी के साथ उनके आगे की सारी फिल्मों में काम किया था। अच्छा, चुपके चुपके की स्टोरी बड़ी ही मजेदार है। धर्मेंद्र यानी प्रोफेसर परिमल बॉटनी के प्रोफेसर होते हैं, जिनकी एक विमेंस कॉलेज विजिट के दौरान शर्मिला टैगोर से मुलाकात होती है। बंगले पर एक गार्ड होता है, उसे अपने पोते को देखने जाना होता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। तो धर्मेंद्र उसकी हेल्प करते हैं एंड उसकी जगह रात में वो ड्यूटी करते हैं। मतलब प्रोफेसर साहब खुद गार्ड बन जाते हैं। और जब इस बात का शर्मिला टैगोर को पता चलता है तो वो इम्प्रेस हो जाती है उनसे, एंड फिर दोनों के बीच लव शव शुरू हो जाता है जी। बात शादी तक पहुंच जाती है। इधर शर्मिला यानी सुलेखा अपने जीजाजी यानी ओम प्रकाश की काफी तारीफ करती हैं। मतलब हमेशा ही अपने जीजाजी जीजाजी बस जीजाजी जीजाजी की बात करती रहती हैं। तो धर्मेंद्र बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो गेम खेलते हैं, और यही गेम इस फिल्म में देखने लायक है। ओम प्रकाश जो जीजाजी बने हैं शर्मिला टैगोर के, वो एक वकील हैं और कहते हैं कि वो ना देखते ही ताड़ जाएंगे कि क्या सच है क्या गलत है। वो आदमी की बहुत अच्छी पहचान करते हैं, तो धर्मेंद्र से एक चैलेंज के तौर पर ले लेते हैं और फिर तो भैया कमाल करते हैं। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इससे जरूर देखिएगा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। फिल्म का म्यूजिक भी गजब का है, दो गाने तो बहुत ही कमाल के हैं। लवली म्यूजिक जो ऋषिदा की फिल्मों में होता है, अब के सजन सावन में, ये एसडी बर्मन साहब का म्यूजिक है। और वो दूसरा गाना सारेगा मामा सारेगा, इसके अलावा एक और गाना है एरी पवन ढूंढे तुझे मेरा मन चुपके चुपके, टाइटल ट्रैक है भाई। अच्छा, ये जो सारेगा मामा सारेगा है ना, इसमें भी बड़ी कॉमेडी देखने को मिलती है। बेसिकली आर डी बर्मन स्टाइल का म्यूजिक है इस गाने का। तो चलिए, फिलहाल चुपके चुपके की बहुत सारी बातें हुई, अब चुपके चुपके एक गाना सुन लिया जाए इस फिल्म से। क्या कहते हैं आप सिंगापुर? तो रेडियो मजी 24/7 लाइव पर आप भी अपनी यादें हमसे ताजा कर सकते हैं। 1975 में क्या हुआ था आपके साथ? आप पैदा हुई थी मोहतरमा? कमाल है, वेरी गुड। अच्छा फिर क्या हुआ था बताइए, बताइए कहाँ पैदा हुई, क्या क्या हुआ, सब कुछ बताइए हमारे फेसबुक पेज पर। अगर मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं हूँ समर, रेडियो मजी 24/7 लाइव पर आपको लिए चला हूँ यादों के कारवां पर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: क्रिकेट का नाम लेते ही सचिन तेंदुलकर या गावस्कर का नाम आता है। अगर फुटबॉल की बात करें तो मैराडोना, पेले या बेकहम या फिर मेसी का नाम याद आता है। कंफ्यूज हो गए आप? लेकिन हिंदी सिनेमा की अगर बात करें तो एक ही नाम निकलेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं आपको, और वो नाम है शोले, द माइलस्टोन ऑफ इंडियन सिनेमा। वेलकम बैक, मेरा नाम है जमर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यादों का कारवां एक्चुअली आज गुजर रहा है 1975 के साल से। तो ये वही साल था जब शोले रिलीज हुई थी। इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट आप याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद कर रखी है लोगों ने। एक एक डायलॉग इसका याद रखने लायक है। इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया वो सब इस फिल्म के कैरेक्टर नेम से ही आगे जाने लगे, उनके कैरेक्टर्स अमर हो गए। इस फिल्म का सबसे खतरनाक या यूं कहिए कि सबसे टॉप का कैरेक्टर था गब्बर सिंह, जिसको अमजद खान ने प्ले किया था। उन्हें आज भी गब्बर सिंह के नाम से जानते हैं लोग। मैं आपको बताऊं, जब मैंने शोले देखी उसके बाद मैं हर फिल्म में अमजद खान को गब्बर सिंह ही कहा करता था। और गब्बर सिंह जब कैरेक्टर रोल करने लगे या कॉमेडी करने लगे तब भी मैं मानता था कि ये विलेन है, ये छोड़ेगा नहीं, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो गब्बर सिंह का ये कैरेक्टर ऐसा दिमाग पर छाया था, मतलब कैरेक्टर के नाम ही हिट हो गए थे। संजीव कुमार साहब ठाकुर के नाम से जाने गए,
1: रामलाल,
0: और अमिताभ बच्चन साहब धर्मेंद्र, जो इस फिल्म में जय वीरू रहते हैं, वो आज भी जय वीरू के नाम से ही जाने जाते हैं। मतलब अपने नाम के अलावा जय वीरू के जो नाम है दोस्ती का, जो एक सिनोनिम बन गए हैं, ये इसी फिल्म की देन है। एंड स्पेशली हेमा मालिनी, जिन्हें आज भी लोग बसंती कहकर बुलाते हैं। और एक और कॉमेडी कैरेक्टर था सूरमा भोपाली, जो आपको बहुत भाएगा। और ये सब किरदार बुनने वाले और इस फिल्म की कहानी लिखने वाले कौन थे, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, सलीम जावेद की ये जोड़ी थी। सिंगापुर इस फिल्म की इतनी सारी खूबियां हैं कि अगर मैं बताने लग जाऊं तो सारा शो इसी में खत्म हो जाएगा, और फिर भी टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन बातें नहीं होंगी। सिंगापुर में भी सबसे ज्यादा शोले ही चली है। रमेश सिप्पी साहब ने इसका डायरेक्शन किया है और आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इस फिल्म के बारे में आपको क्या बताऊं, इस फिल्म के कौन से डायलॉग की बात करूं, कहां से स्टोरी शुरू करूं, क्योंकि इस फिल्म की पूरी स्टोरी ही दमदार डायलॉग्स जैसी है। तो चलिए मैं आपको कुछ डायलॉग्स सुना देता हूं, आई एम श्योर आप एक्साइटेड हो जाएंगे।
2: कितने आदमी थे
3: सरदार? दो आदमी थे।
2: दो आदमी, तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब गोली खा।
4: ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है।
0: और सबसे मजेदार तो वो जब जय बसंती से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? तो बसंती यानी हिमा बड़ी तरह के बताती हैं, यूं कि हमने आपसे तो बात की नहीं, लेकिन अब आपने सचमुच पूछ लिया तो हम बता देते हैं, हमारा नाम बसंती है। रोमांस, क्राइम, दोस्ती, ड्रामा, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको इस फिल्म में। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि भैया अगर शोले नहीं देखी तो क्या हिंदी फिल्में देखी आपने? सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, गाने भी इसके कमाल के हैं। एक गाना तो वो है जो होली पर आप सुनते होंगे, होली के रंग जब खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, और वो कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। तो दोस्ती के लिए एवरग्रीन गाना वो भी तो है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कहते हैं आप, कौन सा सुनाओ इनमें से? कंप्यूटर जी आप भी तो थोड़ी अपनी पसंद लगाइए, दिमाग लगाइए, कौन कौन से गाने आप सुना सकते हैं, दो गाने सुनवा दीजिए। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर सिंगापुर आप हैं समर के साथ। यादों का कारवां के जरिए आज आप सैर कर रहे हैं 1975 के साल की। लौटता हूं एक और फिल्म का जिक्र लेकर।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवा। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज हमारा ये कारवा गुजर रहा है 1975 के साल से। तो अब एक और फिल्म का जिक्र कर लेते हैं जो 1975 में आई थी। राज कपूर साहब को आप जानते होंगे, कौन नहीं जानता। हिंदी सिनेमा के ग्रेटेस्ट शोमैन के नाम से वो जाने जाते हैं क्योंकि वो पूरा सिनेमा दिखाते थे, यू नो, एक बड़ा सिनेमा। राज कपूर साहब प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, म्यूजिक कंपोजर भी थे वो। हाँ, म्यूजिक कंपोज कर लिया करते थे वो, और बेहतरीन एक्टर के साथ एडिटर भी थे वो, सब कुछ थे जी। तो अगर बाप में इतनी क्वालिटी है तो बेटे में भी होनी चाहिए। तो एक तरफ तो राज साहब के छोटे बेटे ऋषि कपूर अपने अभिनय से सबको इम्प्रेस कर रहे थे, एंड दूसरी तरफ बड़े बेटे रणधीर कपूर एक्टिंग के साथ फिल्में भी बनाने लग गए थे। तो इसी साल 1975 में उनकी एक मूवी आई थी धर्म करम। खुद के प्रोडक्शन हाउस यानी आर के बैनर तले बनी ये फिल्म डायरेक्ट भी रणधीर कपूर साहब ने की थी। हालांकि इसमें अभिनय भी किया था उन्होंने, और उनके साथ थे राज कपूर और प्रेमनाथ उनके मामा जी। रेखा फीमेल लीड में थी। ये एक अच्छी फिल्म थी, मतलब इसकी स्टोरी, गाने सब एकदम बढ़िया थे। And this was a successful movie of that year. ये रणधीर कपूर साहब की पहली फिल्म नहीं थी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी जो उन्होंने डायरेक्ट की थी। इससे पहले उन्होंने कल आज और कल बनाई थी, जिसमें कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियां थी। खुद रणधीर कपूर, इनके पिता राज कपूर एंड राज कपूर के भी पिता पृथ्वीराज कपूर साहब उस फिल्म में थे। खैर, फिलहाल तो हम धर्म कर्म की बात कर लेते हैं। फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है कि प्रेमनाथ, जो कि एक बदमाश हैं, गरीब हैं, एक झोंपड़ी में रहते हैं अपनी गर्भवती पत्नी के साथ, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर उनके लड़का होता है तो वो ये बुरे काम करना छोड़ देंगे। बहरहाल उनकी बीवी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन प्रेमनाथ वैसे के वैसे रहते हैं और एक अपराध करने के बाद ये 14 साल की जेल चले जाते हैं। रणधीर कपूर, जिनका नाम है धर्म, वो इनके बेटे हैं। बाप के जेल जाने के बाद धर्म दारा सिंह के साथ रहते हैं। दारा सिंह इसमें पहलवान भीम सिंह बने, लेकिन धर्म का इंटरेस्ट म्यूजिक में ज्यादा है। और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है, मजे की स्टोरी है। अगर आप सिर्फ राज साहब को ही देखना चाहते हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं। और सबसे खास बात, इसमें एक गाना है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला ला ला ला ला। ये गाना फिल्म में 3 बार आता है और कई सिंगर्स ने इसे गाया, लेकिन मुकेश जी के गाए हुए वर्जन को फिल्म फेयर फॉर बेस्ट सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया, एंड मजरूह सुल्तानपुरी साहब को इस गाने के लिए बेस्ट लिरिक्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन अवार्ड मिला नहीं। पर गाना कमाल का है। वेल, अभी और भी फिल्म है जिनका जिक्र करना बाकी है, तो अभी तो फिलहाल ये सुपरहिट गाना आप सुन लीजिए। और याद रखिए, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। कीप लिसनिंग।

0: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maa ki daal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi Lunch and Dinner at Shahi Maharani, Raffles City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पहले चलो,
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
4: रात

को हमारे साथ यूं ही चलता रहेगा सातों जन्म। और इसी साथ को आगे बढ़ाने के लिए एक और फिल्म का जिक्र करने के लिए मैं खेल खेल में आ गया हूँ। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मेरा नाम है समर, आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। और आज हमारा कारवां कहाँ से गुजर रहा है? 1975 के साल से। तो अभी खेल खेल में मैंने जिस गाने का जिक्र किया और खेल खेल में जो गाना गा दिया, उसी फिल्म का जिक्र कर लेता हूँ जिसका नाम भी है खेल खेल में। अभी कुछ देर पहले मैंने राज साहब के बड़े बेटे की फिल्म के बारे में आपसे बात की, धर्म करम की। अब छोटे बेटे की फिल्म की बात कर लेते हैं। जी हाँ, मैं ऋषि कपूर साहब की बात कर रहा हूँ। वही खेल खेल में लीड हीरो थे और उनके साथ थी नीतू सिंह, जो बाद में नीतू कपूर बन गई, इनकी धर्म पत्नी बन गई। राजेश खन्ना का रोमांटिक हीरो का स्टारडम अब इस वक्त धीरे धीरे कम हो रहा था, एंड इधर ऋषि कपूर धीरे धीरे उस इमेज को खुद में लेकर आ रहे थे। ये एक हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई खेल खेल में, क्योंकि फिल्म की स्टोरी और म्यूजिक कमाल का था। और सिंगापुर हिंदी फिल्मों में यही तो दो चीजें होती हैं जो किसी भी फिल्म को हिट या सक्सेसफुल बना देती हैं। अच्छा, स्टोरी से भी ज्यादा खास इसके गाने थे, जो आर डी बर्मन साहब की पहचान बन गए, क्योंकि पंचम ने ही कंपोज किया है इस फिल्म का म्यूजिक भी। मतलब यूं ही अगर आप किसी से कहेंगे कि आर डी बर्मन का कोई गाना बताइएगा, तो वो ये जरूर गाएगा, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इतना हिट हुआ था ये गाना और आज भी जबरदस्त हिट है। साथ ही एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, इन दोनों गानों में किशोर दा की मस्ती भरी आवाज आप सुन सकते हैं। एक गाना शैलेंद्र सिंह की आवाज में है, क्योंकि शैलेंद्र सिंह ऋषि कपूर की आवाज बन चुके थे, तो एक गाना तो उनकी आवाज में बनता ही था। अरे वही वाला, अरे हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा, ऐसे जो मैंने पहले पहले आपको सुनाया था बड़े ही बेसुरे अंदाज में। तो इस फिल्म का डायरेक्शन किया था रवि टंडन साहब ने। कौन है रवि टंडन, जानते हैं आप? रवि टंडन रवीना टंडन के पिताजी का नाम है, और रवीना टंडन ने एक बार कन्फेस भी किया था कि वो ऋषि कपूर साहब से इतना प्यार करती थी, बहुत छोटी सी थी, कि वो उनकी शादी में गई नहीं और वो उनसे लड़ती रही कि आप नीतू सिंह से शादी क्यों कर रहे हैं, मुझसे शादी कीजिएगा। उस वक्त रवीना टंडन की उम्र महज 6-7 साल की रही होगी। तो खैर, ये दीवानगी थी ऋषि कपूर साहब की। अच्छा, फिल्म के गाने लिखे थे इंदिवर साहब ने, तो इस हिट फिल्म को आप जब देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की गजब की केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, और 70s का फैशन भी, वो बेल बॉटम पैंट्स जो नीचे से काफी चौड़ी होती थी। तो इस फैशन को अगर दोबारा से देखना चाहते हैं आप, ओम शांति ओम नहीं देखी आपने तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। फिलहाल इस फिल्म के गाने मैं आपको सुनवा देता हूं। आप सुनते रहेगा रेडियो 24/7 लाइव। मैं हूं समर, लौटूंगा एक और फिल्म का जिक्र लेकर। यह है यादों का कारवां।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जो

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ यादों का कारवां एंजॉय कर रहे हैं और आज यादों का कारवां गुजर रहा है 1975 के साल से। सुपरहिट फिल्में इस साल आई उन्हीं का हम जिक्र कर रही हैं। एक और फिल्म आई थी इस दौरान, धर्मात्मा था उसका नाम। बड़ी कास्ट, बड़ा सेट, बड़ा बजट और साथ ही बड़ी सक्सेस मिली इस फिल्म को। द वेरी हैंडसम फिरोज खान ने इसे डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया और वो खुद इस फिल्म में लीड रोल में भी थे और ये फिल्म फिरोज खान के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद उनके करियर में उछाल आया। फिरोज खान के अलावा प्रेमनाथ इस फिल्म में थे, इफ्तिखार, जीवन, डैनी, हेमा मालिनी, फरीदा जलाल, रेखा, रणजीत, मदनपुरी, उफ इतने सारे बेहतरीन कलाकार की फिल्म में, मल्टी स्टार फिल्म में बनाते थे वो भी। अब तो भाई साहब फिल्म का हिट होना लाजमी था कि नहीं था। देखिए कोई ना कोई तो किसी ना किसी को पसंद करता होगा तो वो उसके लिए फिल्म देखने जाएगा। तो सिंगापुर एक बात बताइए, आप जब इतने सारे कलाकार यहाँ काम कर रहे हो तो बाकी फिल्में कौन कर रहा था? वेल ये फिल्म अफगानिस्तान में शूट हुई थी और ये शायद अफगानिस्तान में शूट हुई पहली फिल्म थी। अच्छा इस फिल्म की एक और खास बात है कि इसमें जो ड्रेस डिजाइनिंग की है ना वो इंडिया के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल घराने की मालकिन ने की है। कैन यू गेस वो कौन है? एनी गेसेस? ना, देखिए चलिए मैं बता देता हूँ, उनका नाम है आदि परमेश्वर गोदरेज जी। गोदरेज की मालकिन परमेश्वर गोदरेज ने, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम्स डिजाइन की थी। फिरोज खान साहब को जैसे ही पता लगा कि परमेश्वर गोदरेज का इंटरेस्ट है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में और वो पहले ऐसा कुछ कर चुकी हैं, उनके कुछ एक डिजाइन उनको पसंद आए थे तो उन्होंने उन्हें अप्रोच किया और कहा कि आपको ये करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम आप कैसे करेंगे। और उन्होंने फिरोज खान साहब के इतने अधिकार पूर्वक किए गए आग्रह को ठुकराना उचित नहीं समझा। उन्होंने उनका ये जो ऑफर था एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने ही इस फिल्म के तमाम जो कॉस्ट्यूम्स आप देखते हैं डिजाइन किए, बहुत ही बेहतरीन थे। फिल्म का म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया और इससे पहले वो फिरोज खान की फिल्म अपराध में भी म्यूजिक दे चुके थे। बाद में भी कई फिल्मों में फिरोज खान की कल्याण जी आनंद जी ने म्यूजिक दिया और इंदिवर साहब ने उनके लिए गाने लिखे। इस फिल्म में बुकेशी, एक सेंट्रल एशियन स्पोर्ट है बुकेशी जो घोड़ों पर खेला जाता है, उसे शूट करने के लिए उस जमाने में 1975 में फिरोज खान साहब ने एरियल शॉट्स लिए थे। मतलब वो इस फिल्म को एक बड़ी फिल्म बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और कमाल की सिनेमेटोग्राफी के लिए कमल बॉस को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर वही थे। फिल्म की स्टोरी बड़ी कसी हुई थी और मजेदार है, सबने कमाल का अभिनय किया है। मतलब इसे एक पूरा सिनेमा दिखाने वाली फिल्म आप कह सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा इतने सारे एक्टर्स को आप एक ही फिल्म में देख लेंगे। तो अब आपको सुनाता हूँ धर्मात्मा से एक जबरदस्त हिट गाना। हालांकि धर्मात्मा के एक नहीं कई गाने जबरदस्त हिट थे। कंप्यूटर जी प्लीज दो गाने आए। कंप्यूटर जी को इशारा किया शायद दो गाने सुनवा दें आपको। आप सुनते रहेगा रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर। लौटता हूं एक और फिल्म का जिक्र लेकर यहीं पर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577। They are fresh. They are hot.
2: They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musti Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musti Top 20. Only on Radio Musti 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

वेलकम बैक रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां सुन रहे हैं आप सिंगापुर। मैं समर हूं आपके साथ और आज अपने इस कारवां को लिए चला हूं 1975 के साल से। इस साल अपने धर्मपाजी यानी धर्मेंद्र जी की भी एक और फिल्म आई थी, नाम था उसका प्रतिज्ञा। इसको धर्मेंद्र ने ही प्रोड्यूस किया था और दुलाल गुहा साहब ने इसका डायरेक्शन किया था। अच्छा, आपने वो गाना तो सुना होगा, मैं जट

तो मर दिए, जिसमें खुद धर्मेंद्र का डांस उनका एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था। आज भी जब कोई ऐसा डांस करता है तो सब पहचान जाते हैं कि धर्मपाल जी का स्टेप है। ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र ने बेहद कमाल का काम किया। साथ ही उनकी लीड एक्ट्रेस थी इसमें हेमा मालिनी, उनकी फेवरेट एक्ट्रेस जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी। भाई ये फिल्म में हीरो है हीरोइन है तो विलेन भी तो होना चाहिए, एक्शन फिल्म है भाई ये, तो कौन है विलेन बताइए बताइए, कौन था इस फिल्म का विलेन? मैं गिन देता हूँ, अपनी बोलने के डिफरेंट स्टाइल के लिए मशहूर थे वो, कौन? उनका नाम अजीत है। इसके अलावा सत्येन कपूर थे, शोले के सूरमा भोपाल यानी जगदीप थे, कॉमेडी किंग जॉनी वॉकर भी थे इस फिल्म में। म्यूजिक इस फिल्म का दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। तो आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने सबसे ज्यादा हिट म्यूजिक दिया साहब 70s में, तो ये फिल्म भी उसमें से एक फिल्म बन गई। फिल्म की स्टोरी शानदार है, धर्मेंद्र जो कि कनपट ट्रक ड्राइवर होते हैं वो आगे जाकर कैसे पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं, वहीं अजीत जो डाकू बने, डाकू भारत ठाकुर। डाकू के किरदार को उस टाइम पर काफी दिखाया गया है कई फिल्मों में, शोले में भी देखिए गब्बर सिंह, यहाँ पर ठाकुर भारत सिंह, क्योंकि बेसिकली सिनेमा सोसाइटी से आता है ना कि सोसाइटी सिनेमा से। हिंदुस्तान में कई ऐसे इलाके थे उन दिनों में जहां पर डाकुओं का दबदबा रहता था, तो ये फिल्में उस वक्त की कहानियां दिखा रही थी। सो एक कमाल की हिट फिल्म ये साबित हुई। धर्मेंद्र के इस साल की हिट फिल्मों के खाते में शोले चुपके चुपके के अलावा ये फिल्म भी आई। तो अभी सुनते हैं उनकी इस फिल्म का ये धमाकेदार गाना, और गानों के बाद मुलाकात होगी आपसे यहीं पर। सो स्टे ट्यून्ड।

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है, जट यमला पगला दीवाना हो।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। से आता है ना तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश, योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। ट्यून इन टू मी ऑन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, मैं हूं समर और अब आपसे मुलाकात का ये वक्त खत्म होने ही वाला है, लेकिन जाने से पहले यादों का कारवां में जो आज 1975 के साल से गुजर रहा है, आपसे एक और फिल्म का जिक्र कर लेता हूं। इस साल जनाब बहुत सारी फिल्में आई, शोले, दीवार, आंधी, चुपके चुपके, मिली वगैरह वगैरह, किसी में अमिताभ बच्चन तो किसी में शशि कपूर तो किसी में धर्मेंद्र, ये सभी एक्टर्स ऐसे थे जो उस वक्त फिल्म के चल पड़ने की गारंटी हुआ करते थे। पर सिंगापुर इस बीच एक ऐसी फिल्म आई इसी साल जिसके लीड रोल्स में न तो कोई बड़ा नाम था और न ही कोई बड़ा चेहरा था, लेकिन फिर भी इन नामी एक्टर्स की फिल्मों के साथ ये खड़ी रही और उसने अपने एक अलग मुकाम बनाया। जबरदस्त हिट हुई ये फिल्म, नाम था इस फिल्म का जय संतोषी माँ। वैसे इस फिल्म की सिर्फ एक खासियत ही नहीं थी बल्कि कई दिलचस्प बातें और किस्से से जुड़े रहे हैं जिसे जानकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि ये सबसे कम बजट, सबसे कम पहचाने जाने वाले एक्टर्स और मारधाड़ या रोमांस ओरिएंटेड फिल्मों से बिल्कुल हटकर साफ सुथरी माइथोलॉजिकल फिल्म थी, धार्मिक फिल्म थी। फिर भी इसे जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला जो शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। अब आप खुद सुनिए इसके लीड रोल में कौन कौन थे। कानन कौशल, भारत भूषण, आशीष कुमार और एक्ट्रेस अनिता गुहा। एक आध नाम को छोड़ दें तो शायद आपने किसी के नाम भी सुने नहीं होंगे, पर जानते हैं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तब 5 करोड़ कमा कर धमाका कर दिया था। इंडस्ट्री में इस परफॉर्मेंस से हर कोई हैरान था। इन सबसे भी जबरदस्त रही एक और बात, और वो ये कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक इससे एक अलग ही तरह से कनेक्ट हो गए। फिल्म देखकर वो वास्तव में भगवान तक पहुंचने का दावा भी किया करते थे। ये तो छोड़िए, बताते हैं कि जय संतोषी माँ जब रिलीज हुई तब दर्शक चप्पल जूते बाहर उतार कर थिएटर के अंदर घुसते थे, यहाँ तक कि घरों में भी इसे चप्पल उतार कर ही देखा जाता था, और तो और कई दर्शक तो थिएटर के अंदर फूल और चावल तक लेकर जाते थे चढ़ाने के लिए। वो कहते ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। वेल, जहां तक गानों की बात है तो इसे हिंदी सिनेमा के एक अननोन से म्यूजिक डायरेक्टर सी अर्जुन ने कंपोज किया था और कई गाने तो जबरदस्त हिट रहे। इनमें से मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, ये तो हमेशा के लिए माता की कॉमन आरती बनकर ही रह गया। एक और सॉन्ग है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूछो मत कहाँ कहाँ है संतोषी माँ मेरी संतोषी माँ, ये भी काफी पसंद किया गया। तो ये कमाल था इस फिल्म का, वाकई कमाल। तो ऐसी मूवी को मेरा सलाम। बहरहाल आज के शो में वक्त हो गया है जाने का, लेकिन जाते जाते आप ये गाने जरूर सुनिएगा और मेरी बात भी सुन लीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, आप अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, उनके साथ अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। मोहब्बत बनके किसी के दिल में बस जाइएगा, मुस्कान बनके किसी के चेहरे पर सज जाइएगा और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि लोग आपको याद करें। वैसे याद आप मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh May.

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 Live Fan.
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.
7: कोकलाची पाकी जुमे रात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकलाची पाकी जुमे रात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकलाची पाकी जुमे रात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत।

चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009. Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: यो यो हनी सिंगर चलती रहेगी आज सारी रात, दारू तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा एतबार।

0: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
2: मुझे चांद पे ले चलो,
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेली है।
3: जोश में रहो।
4: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh Mehra.
7: Aaj pyar ki ho deal.
8: Deal bole to?
9: Heart, heart.
10: Ama yaar, sauda, sauda.
8: Oho.
7: Dono deal kara seal.
8: Tight, tight, very tight.

0: गणपत कौन है?
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: Ladies and gentlemen, let me tell you the story of Mr. Sutro. 1, 2, 3, start.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट।

0: चलेगी।
1: क्योंकि आज रेणुका ने शुरू किया ही ये कि गोरिया और ये सारी चीजों के साथ, सच्ची में आप लेबल मत करो, लेबल इज नथिंग।
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
3: मैं इंसान को किसी भी कैटेगरी में डालना गंदी बात है, या तो कोई बुरा इंसान हो उसको तुम की कैटेगरी में डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे गोरा काला नहीं यार, बॉडी नहीं यार, शेमिंग नहीं यार, है भाई, क्या ख्याल है?
1: जी जी बिल्कुल, मस्ती मैडनेस फ्राइडे वाला दिन और मैं हूँ अंतरा, साथ में है रेणुका। और मैं भी यही कह रही हूँ कि लेबल्स जो है वो ये डिफाइन नहीं करते हैं कि बंदा कितना केपेबल है किसी भी चीज के लिए। तो ये हमारी एक रिटायर्ड पॉर्न स्टार है, ठीक है, जस्ट उन्होंने फन के लिए, जस्ट टू प्रूव इट टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो क्या होता है ना कि वो एक स्टीरियोटाइप होता है, जैसे ही किसी ने सुना कि पॉर्न स्टार तो बस वहां पे दिमाग चला, इनको और तो आता ही क्या होगा, इन्होंने जिंदगी में और देखा ही क्या, मतलब ओके। तो वेल इन्होंने टेक्सास का बार एग्जाम विच इज नोन टू बी वन ऑफ द टफेस्ट लीगल, डोंट गो देयर, लाइक आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कंट्रोल माय सेल्फ, डू नॉट ड्रैग मी देयर, स्टॉप लाफिंग।
3: इतना कहना चाह रहा हूं, तुमने कहा इन्होंने जिंदगी में देखा है क्या, उन्होंने नहीं तो देखा है जिंदगी में, काफी कुछ देखा है भाई, कैसी बातें कर रहे हो तुम, ऐसे मत करो।
4: आज की रात मजा,
3: ऐसे ही गाना भी ऐसे आ गया। हाँ तो अंतरा पॉर्न स्टार आगे,
1: और मैंने कितना मुश्किल से उधर से डाइवर्ट किया था, ये ना मेरे को खींच के ड्रैग करते हुए लेके गई वहां पे। बट एनीवेज, ये रिटायर्ड पॉर्न स्टार जो है टेक्सास बार एग्जाम जो है उन्होंने काफी सालों की प्रिपरेशन के बाद इतना टफ एग्जाम जो है बिल्कुल पास कर दिया, नॉट बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी अ लॉयर, it was just because she wanted to prove a lot of people a lot of things ki bhai aisa nahi hai ki hum bewakoof yahan pe baithe hue hain, theek hai, hamare paas bhi dimag hai, dekh lo itna tough exam humne bhi baithe baithe pass kar liya, I could pass the bar, okay, to fir tum na apne labels apne paas rakho, so that is just she wanted to prove that,
3: and I think it's great because people are multi talented, multi faceted, jahan ek taraf aap porn star ho sakte ho, dusri taraf aap lawyer kyun nahi ho sakte, bilkul ho sakte ho, ye kya baat hai, matlab राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन सब काम कर सकती है, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब कर सकता है। गाना सुनते हैं आज की रात,
5: रेडियो मस्ती 24/7, डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट

0: अब भाई ऐसा है कि जिंदगी में जब शादियां होती हैं, शादी पे बड़े सारे इंसिडेंट्स होते हैं, सिर्फ दूल्हा दुल्हन और उनके इमीडिएट माँ बाप ही नहीं बट और रिश्तेदार भी होते हैं, और कभी कभी उन रिश्तेदारों की वजह से वो रिश्ता बनते बनते रह जाता है, अंतरा रह जाता है।
1: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस। बट अगर यू नो कलेशी रिश्तेदार आर समटाइम्स रियल फन इन द होल कॉन्वर्सेशन,
0: क्योंकि आज के दिन में हम उस कैटेगरी में आ चुके हैं इसलिए हमें बहुत मजे आने लग गए हैं। बट यू नो व्हाट, एक बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन हुई उत्तर प्रदेश इंडिया में हाल ही में। तो जब प्री वेडिंग रिचुअल्स चल रहे थे, ठीक है, शादी से दो दिन पहले एग्जैक्टली, तो अराउंड सुबह के 4 बजे जो ब्राइड का कुत्ता था वो जोर जोर से भौंकने लग गया। जब वो कुत्ता जोर जोर से भौंका तो जो एक रिश्तेदार था ग्रूम का, ठीक है, उसने उस कुत्ते को दो चपेटे लगा दिए, उसको दो थप्पड़ मार दिए और बोला निकल जाए यहाँ से, और मतलब थोड़ा सा असॉल्ट कर दिया कुत्ते को। अब उसमें क्या हुआ, एक आर्ग्यूमेंट सी हो गई और वो जो दुल्हन है उसने कहा मुझे नहीं करनी शादी, ठीक है, कैंसिल करो सब कुछ। अब उसके बाद दोनों फैमिलीज अपने अपने घर चली गई, जो फाइनल शादी वादी होनी थी वो नहीं हुई। फिर क्या हुआ, 5 दिन के बाद में ये जो लड़की है ये अपना माँ बाप का घर छोड़ के पति के घर पहुंच जाती है अकेले, और उसको जाके कहती है कि भाई शादी तो हमारी लीगली एक्चुअली 1 महीने पहले एक आर्य समाज मंदिर में हो चुकी थी, बाकी के रिचुअल्स तो बाद में हो रहे थे, सो एक्चुअली तो हमारी शादी हो चुकी है, तो हाउ कैन आई से कि मेरे को अब तेरे साथ नहीं रहना, तो मैं आ गई हूँ। और वो रिकॉन्सिलिएशन करते करते उसने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया टू कन्फर्म कि भैया हम अब साथ में रह रहे हैं ओनली बिकॉज हमारी पहले आर्य समाज में शादी हो चुकी है। उसके बाद खुशी खुशी आगे बढ़ गए, पुलिस वुलिस को भी हटा दिया, सब कुछ कर दिया। तो उस कुत्ते की कहानी की वजह से जो ये सब हुआ था उसके बाद सब ठीक हो गया। मतलब ऐसे भी होता है।
1: If only you all could see my face. I was still waiting a turn in the story which I couldn't get. And I was like, अभी ये कुछ बोलेगी, अभी अभी कुछ कुछ तो होगा। क्या कुत्ता जो है, हाँ मतलब
0: सीरियसली कुत्ते के पीछे लड़ाई कर ली, शादी नहीं करी, लोग अपने घर चले गए, थोड़े दिन में आ गई, कहती है मैं हम तो शादीशुदा, क्या मतलब कुत्ते की पिटाई का क्या हुआ, कुत्ते के जस्टिस के लिए कौन लड़ेगा आगे, कोई नहीं, राइट, भूल गए ना।
1: मैं तो कितनी आई वाज प्राउड ऑफ हर कि उसने मतलब ऐसा कदम उठाया कि भाई कोई भी करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है।
0: पर अब पता है क्या, वो अंदर घर में रह के अब वो उस रिश्तेदार को वो ही दो थप्पड़ लगाएगी जो उसने उसके कुत्ते को लगाया था। यू वेट एंड वॉच, ये सीक्वल आएगा, बेटर, बदला।
1: हम है कलेशी बुआ है दोनों यहाँ बैठी हुई, नहीं भी होगा तो करा देंगे।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the desi way.

0: भाई अगले घंटे में यानी कि आवर नंबर टू पे वेलकम करते हुए हम दोनों यानी कि रेणुका एंड अंतरा मस्ती मैडनेस फ्राइडे वाली सुबह हेलो हेलो
1: दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: मस्ती मैडनेस को पता नहीं कितने साल हो गए हैं, एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट 9 years सिंस वी हैव बीन, ओ माय गॉड 9 साल। ये शो को मुबारक हो, मुबारक हो।
3: हाँ
2: भाई क्या बात है, गंदी बातें हुई हैं, मुबारक हो। हाँ तो अंतरा जी बताइए क्या खबर है आपकी इस घंटे की पहली
0: खबर। कुछ ऐसी है कि जब अगर कोई इंसान ना कभी कभी ऑनेस्टली आपको कोई चीज कह रहा हो तो उसको मान लेना चाहिए। उस टाइम पर ना ये अपनी पुलिस गिरी और ये सारी चीज ना कभी कभी थोड़ी सी साइड में रख के ना थोड़ा सा एक रैशनल इंसान बन के सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, फील आती है। एक फ्लोरिडा का बंदा, ठीक है, अब क्या हुआ कि ये ओवर स्पीडिंग कर रहा था तो पुलिस वालों ने आया इधर पूछा कि क्या चल रहा है।
2: हाँ,
0: ओवर स्पीडिंग, अब तो तुम्हारी टिकट कटेगी, तुमको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। अब वो समझा रहा है कि भाई मे को करनी है सुसु और पॉटी, आई है जबरदस्त जोर से, ठीक है, मे को जाने दो, मैं इसीलिए ओवर स्पीड कर रहा था बिकॉज मुझे रुक नहीं रहा है।
2: ओके,
0: ठीक है, रोका नहीं जा रहा, तो आई need to just do whatever I want to do so that you know sab theek rahe, but nahi, police wale unhone apne patrol car mein usko matlab dal diya aur le chale. ab marta kya na karta, usne kaha ki theek hai bhai main to bol hi raha tha, then अब बेचारा उससे तो कंट्रोल हुआ नहीं तो उनकी ही कार में बैठकर उसका सुसु भी हो गया, पॉटी भी हो गया, दोनों का दोनों हो गया। एंड देन उसके बाद भी मतलब बेचारे की किस्मत, उसके बाद मल्टीपल ऑफेंसेस के और टिकटें लगा दी गई उस बेचारे के ऊपर,
2: बीइंग
0: एंड रेजिस्टिंग, एंड उसके बाद और भी 4-5 चीजें कि नहीं ऐसा नहीं होना। भाई वो करता क्या, वो तो बता ही रहा है,
2: नेचर्स कॉल, नेचर्स कॉल। भाई धुरंधर भी नहीं रोक सकता अपनी सुसुपाटी अगर आई होती है तो। हाँ ये तो एक आम आदमी था, हद हो गई यार, मतलब पहले ये सब पुलिस की गलती है मेरे हिसाब से, ये सब पुलिस की गलती है, किसी और की नहीं।
0: लेकिन करे भी क्या, मतलब अगर जस्ट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए तो अगला बंदा करे भी क्या, अगर आई है तो कैसे ही कर सकते हैं।
2: पिछले शो पे मैंने बताया था ना, गाड़ी के अंदर जो टॉयलेट सीट्स आ गई हैं अब चाइना में, वो लगी होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। कोई नहीं, आप पिछला शो सुन लेना किसी टाइम, अब कहां सुनेंगे वैसे भी।
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: और हमारी अगली खबर आपको मैं ले चलूंगी दिल्ली हाई कोर्ट, जी हाँ, जहां पर एक बहुत बड़ा डिसीजन हाल ही में लिया गया था. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मस्ती मैडनेस.
2: मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
3: यस, हमारे फाजिल दोस्त वापस आ चुके हैं मस्ती मैडनेस में. कोर्ट रूम में हमारा फाजिल दोस्त क्या कह रहा है.
1: बहुत बढ़िया बात बोली गई है भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने. क्या है कि आप किसी से मिले, आपका फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, कि अब आप शादी के लिए किसी से मिले कि भाई आप अब शादी करेंगे, ये है वो है, और उसके बाद आपके घर वालों ने या आपने जाके कुंडली मिलवाई और बोला कि अरे यार कुंडली नहीं मिलती तो अब हम शादी तो नहीं कर सकते. हाँ, एग्जैक्टली. सो इस वजह से हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला है कि फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज के चलते अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं फिजिकल रिलेशनशिप तो फिर अंडर अ सर्टन सेक्शन विच इज 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता BNS आप चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं. मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आता सेक्शन 69 क्यों, बट एनीवे ये जो है
3: meant to be.
1: हाँ जी हाँ जी. तो ये है कि रिपीटेड अश्योरेंसेस आपने मैरिज दी हो इंक्लूडिंग एंगेजमेंट अगर आपने करी हो, उसके बाद आपने कहा कुंडली नहीं मिल रही, कुंडली नहीं मिल रही, तोड़ दो टाइप्स, है ना. सो ये सारे काम जो है वो बिफोर एंटरिंग इनटू फिजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए. सपोज आप और आपके होने वाले पार्टनर बाहर घूमने गए और आपको एकदम से फिजिकल रिलेशनशिप का मन किया, लेकिन आप नहीं कर सकते, आप एक दूसरे से एक सवाल पूछेंगे, ओए कुंडली मिली कि नहीं, करने से पहले. हाँ,
3: अच्छा ये तब होता है जब लड़का लड़की दूसरे ट्रैक पे चल रहे होते हैं और फैमिली दूसरे ट्रैक पे चल रही होती है.
1: बिल्कुल,
3: कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, ये अपने स्पीड से चल रहे हैं.
1: बिल्कुल.
3: इनकी स्पीड में ही आगे बढ़ चुके.
1: सो आई थिंक इट्स अ कोऑर्डिनेशन इशू. इस समय माँ बाप और बच्चों के बीच की कोऑर्डिनेशन, अगर तुम छुपके मिल रहे हो और तुम्हारा फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, तब तक माँ बाप के पंडित जी ने आके बोल दिया सॉरी नो मैच, फिर तुमने अगर छोड़ा तो तुम्हें जेल हो सकती है, ठीक है. सो प्लीज,
3: तभी ये दफा 69 है, बिकॉज तुम मेरी सुनो मैं भी तुम्हारी.
1: एग्जैक्टली.

0: ये आई थिंक दिस इज अ यूनिवर्सल थिंग. लेट मी टेल यू, लेट मी ट्राई एंड टेल यू. ओके,
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती.
2: रेडियो मस्ती 24/7. जी हाँ, गाने चल रहे हैं, बढ़िया बातें हो रही हैं, उससे भी ज्यादा बढ़िया. और इस समय हम आपको बताएं कि आज तो 8 तारीख हो गई है मई की, वो भी बहुत बढ़िया.
0: हाँ जी, तो मैं ये कहने की कहीं कोशिश कर रही थी कि नासा के अपोलो एरा के स्पेस सूट्स की बात कर रही हूँ.
2: हाँ,
0: ठीक है.
2: हाँ,
0: तो जब ये स्पेस सूट्स बना रहे थे तब नासा को एक टेक्निकल इश्यू एक्चुअली में फेस करना पड़ा विद रिगार्ड्स टू द यूरिन कलेक्शन डिवाइसेस, जो कि स्पेस सूट्स के अंदर उसको जो है यूज किया जाता है.
2: जी,
0: तो ये जो लेटेक्स के स्लीव्स थे दे ओरिजिनली केम इन 3 साइजेस, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज.
2: हाँ,
0: तो होता क्या था कि एस्ट्रोनॉट्स जो है, बंदे जो है, दे कंसिस्टेंटली पिक्ड अप लार्ज साइज. ठीक है, होता कुछ ऐसा था कि इट लेड टू इम्प्रॉपर फिट्स एंड मेसी लीक्स मिशंस के दौरान.
2: हाँ,
0: ठीक है. अब कैसे किया उन्होंने सॉल्व प्रॉब्लम?
2: हाँ,
0: ठीक है. तो इंजीनियर्स जो है उन्होंने रीनेम कर दिया द साइजेस टू लार्ज, जाइगेंटिक एंड ह्यूमंगस.
2: तो फिर सब लार्ज लेने लग गए, फिर से हो गया स्मॉल. क्या बात है भाई, मतलब दिमाग तभी तो नासा है ना, नासा है ना, दिमाग तो लगा.
0: दिस वाज सो कूल एंड देन इट एंश्योर्ड दैट ऑल द मेन सिलेक्टेड द करेक्ट साइज उनके एक्चुअल फिजिकल नीड्स के हिसाब से विदाउट ब्रूजिंग देयर ईगोस
2: एंड गोइंग विद द राइट ट्रैक राइट नाउ. हुसन तेरा तौबा तौबा.
1: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: And on Radio Musti 24/7, जी हाँ, इस समय हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे स्पोर्ट्स की तरफ. जी हाँ, खेल की दुनिया से ये वाली खबर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए.
2: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस. तरह तरह के खेल, ऑल टाइप ऑफ खेल्स वी टॉक अबाउट ऑन मस्ती मैडनेस. ये कौन सा वाला खेल है रेणुका?
1: हाल ही में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि हम गेम्स खेल रहे हैं हम सब मिलके, आ जाओ घर पे. मैंने कहा मैं फ्रेंड्स के साथ गेम्स नहीं खेलती. They said please can you just stop. बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 बात हो रही है स्पोर्ट्स की. जी हाँ, हाल ही में एक न्यूज थी सुर्खियों पर कि स्वीडन ने ऑफिशियली सेक्स को एक स्पोर्ट डिक्लेयर कर दिया है. आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा. टर्न्स आउट दैट इट इज एक्स, चाहे आप बहुत दुखी होंगे सुनकर, लेकिन इट्स फेक न्यूज. सो बात कुछ ऐसी है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने अप्लाई किया था. हाँ, मुझे तो लगा था फाइनली वी कैन बी स्पोर्टी इन लाइफ, बट नहीं हो पाया. सो एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने अप्लाई किया था सरकार को, स्वीडिश स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन को, कि भाई एक स्वीडिश सेक्स फेडरेशन भी होना चाहिए. लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी एंड स्वीडिश गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्पोर्ट या चैंपियनशिप ऑथोराइज नहीं किया है. ओरिजिन कहाँ से हुआ इस रूमर का, कि ड्रैगन ब्राटिक जो एक आदमी है, इंसान है स्वीडन में, वो एक स्ट्रिप क्लब्स चलाता है. स्ट्रिप क्लब्स, ओके. एंड ही वॉन्टेड टू रजिस्टर स्वीडिश सेक्स फेडरेशन ताकि वो कॉम्पिटिशन होस्ट कर सके अपने स्ट्रिप क्लब्स में. ओके, फिर ऑफिशियली स्वीडिश स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन ने कहा कि हम ऐसा

0: कुछ रिकग्नाइज नहीं करेंगे. स्पोर्ट्स को तो रहने दो आप इसको, ठीक है. आपने बाकी जिस कैटेगरी में इसको जाके करना है आप करो. फिर उसके बाद ये सारी की सारी यू नो बड़ी बड़ी सी खबरें आ गई कि 2023 में अप्रूवल हो गया और सेक्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया. फिर उसके बाद में स्वीडन गवर्नमेंट ने आके ही बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, किसी ने देखा नहीं है, फालतू बातें बंद करो.
1: हाँ जी हाँ जी, ये कुछ बातें ना लोगों के ख्याल में आती है, ख्याल में ही होती है, पकती है वही रह जाती है. और उसके बाद आजकल तो फिर ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि कौन सी न्यूज सच है कौन सी झूठ है.
0: बिल्कुल,
1: वेरी वेरी टफ.
0: बट बंदे का बिजनेस प्लान देखो कि पहले ना मैं ना स्ट्रिप क्लब खोलूंगा, फिर ना उसके बाद मैं ना वहाँ पे सेक्स कराऊंगा और फिर कॉम्पिटिशन कराऊंगा. मतलब रियली रियली
1: बट वैसे रेणुका कुछ भी हो सकता है. यू नो अब आई थिंक आफ्टर 9 इयर्स ऑफ मस्ती मैडनेस वी कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कुछ भी कहीं भी हो सकता है.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
0: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. रेडियो मस्ती 24/7 में दूसरे घंटे का एंड हो रहा है, पर आज ना आंसर प्रिपेयर्ड नहीं है. न्यूज नहीं है, न्यूज नहीं है, न्यूज.
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
4: ये फालतू में इन्होंने यहाँ पे चिपका दिया. कोई रीजन नहीं था इसका, कोई जरूरत भी नहीं थी इसकी, तो इन्होंने ऐसे बोल दिया. बट वेल, न्यूज देती हुई मैं जो इनके हिसाब से नहीं है. भाई एक मम्मी जो है वो उन्होंने अपना जो एक तो आजकल हर कोई वीडियो डालने लग गया. आई थिंक सम मॉम्स हैव रियली फिगर्ड इट आउट एक्सेप्ट फॉर हर मॉम्स जो कि अभी भी फिगर आउट कर रही है बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज्यादा तेजी से. तो कुछ ऐसा है कि ये आंटी जो है, सो शी मेड, शी इज सेइंग, शी इज रैंटिंग बेसिकली कि मेरी बेटी जो है अब शादी लायक हो चुकी है और उसने ना डॉक्टरी पढ़ी हुई है, तो हम उसके लिए लड़का देख रहे थे. तो जब लड़का देख रहे थे तो ये भाई सेम ही प्रोफेशन का होगा तो सही होना चाहिए, एक दूसरे के प्रोफेशन को समझेंगे, ऑल दोस थिंग्स. बट क्या हो गया है आजकल के लड़कों को, आजकल के 30-34 ईयर्स के लड़के, कोई गंजा निकल रहा है तो कोई यू नो अंकल जैसा दिख रहा है, तो कोई ऐसा हो रहा है. अब ऑब्वियसली बेटी ने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, वो अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान भी रखती है, तो उसको बंदा भी दिखने वाला तो मतलब थोड़ा सा प्रॉपर जो अपना ख्याल रखता हो वैसा वाला कोई चाहिए. तो मतलब आज कल के इस शादी वाले मार्केट में तो क्या हो गया है, लड़कों को कोई मिल ही नहीं रहा है. ये तो आंटी की रैंट थी पूरी, लाइक ए टू जेड कि भाई उनकी बेटे को नहीं मिल रहा है लड़का, क्योंकि बेटी की बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस है और सारे चेकबॉक्स पे टिक नहीं हो पा रहा है. और लड़के उन्होंने बोल दिया कि सारे अंकल आजकल दिखते हैं किसी की टोन बड़ी हुई है, कभी किसी से नीचे कमेंट्स, भाई ओ माय गॉड, अलग ही. आंटी आपके बेटे की एज क्या है? आंटी हमने तो आपकी बेटी को देखा भी नहीं है, अभी दिखती कैसी है, तो आप कह रहे हो सुंदर है. आप उनका दिखाओ जरा फोटो, तो हम भी देखें कि कितनी सुंदर है, जिसकी वजह से जो है सारे चेकबॉक्स नहीं हो रहे हैं आपके. फिर उसके बाद तो भाई लड़कों ने कि इतना सारा मतलब उसने अपनी जिंदगी में कितना सैक्रिफाइस किया होगा, इसीलिए उसके बाल झड़ गए होंगे, इसीलिए उसने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया होगा, और उसको आप ऐसे कह रहे हो कि 30-34 में ऐसे ही कोई ना डॉक्टर बन जाता. ओह माय गॉड.
2: ये भी एक कहानी है भाई. क्या है कि लगी बहुत जोर से सुलगी, क्योंकि क्या है ना, जिंदगी भर लड़की चाहिए फेयर, टॉल, स्लिम कॉम्प्लेक्शन, फलाना ढमकाना, टी टोटलर, हाउस होम मेकर, पढ़ी लिखी, पैसे भी लाए, घर भी दे. लेकिन अब जब आदमियों पे एक छोटी सी लगी तो लगी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है. अगले घंटे मिलेंगे क्या इनको और खबरें बताने के लिए?
4: जी जी जी, इतने क्राइटेरिया तो मतलब वुमेन हैव बीन गोइंग थ्रू सो मेनी क्राइटेरिया फॉर अ वेरी गुड लॉन्ग टाइम.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: और हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 पर। भाई मैं तो कब से इंतजार कर रही थी ऐसी वाली सजेशन का, तो भाई आपको भी पसंद आए कि नहीं हमें बताइए जरा।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: कैसी वाली सजेशन? वैसे रेणुका, आपके वो डॉक्टर सब बड़े दिन से आए नहीं है, जो चिटस लगाते थे चिटस।
0: देखो कैसा इम्पैक्ट छोड़ के गया कि तुम आज तक पूछ रही हो उनके बारे में। एक्चुअली ओके, सो हम बात करेंगे। हमें पता है कि भाई भारतवर्ष में जब डाउरी बैन हो चुकी है, दहेज देना पाप है, राइट, और लेना तो उससे भी बड़ा पाप है, तो ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं इनके खिलाफ फिर भी अभी तक लोग बात करते हैं, लेकिन एक्शन बहुत कम होता है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट गाड़ियां भी देते हैं लोग दहेज में, एज वी नो, राइट। सो एक एजुकेटर है, फैजल खान साहब, पटना में रहते हैं, यूट्यूब टीचर है, एंड ही इज नोन फॉर हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्वाइट ऑफन ह्यूमरस टेक्स ऑन सोशल इश्यूज। तो उन्होंने पिछले ही साल में क्या किया था कि एक ऑनलाइन बहुत ही मेजर आर्ग्यूमेंट शुरू करा दिया था अबाउट द डाउरी सिस्टम इन इंडिया। तो उनसे जब बात करी गई तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि जब डाउरी में गाड़ियां दी जाती हैं, ठीक है, दो जरूर दो, लेकिन डाउरी वाली कार का जो नंबर प्लेट है ना, इट नीड्स टू बी ऑफ अ डिफरेंट कलर। नाउ दैट कैन बी पिंक कलर नंबर प्लेट। तो उससे क्या है कि जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो आराम से एक बंदा देख के बोल सकता है वो देखो दहेज वाली कार चला रहा है, दहेज वाली। मुझे तो ये बात बहुत पसंद आई भाई, पिंक स्पेशल प्लेट कैटेगरी ओनली फॉर डाउरी रिलेटेड व्हीकल्स, ताकि सोशल स्टिग्मा और अवेयरनेस बढ़े। क्यों अंतरा, बात सही है कि नहीं है?
2: इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, बट वही हो जाता है ना कि लेना सबको है बट बताना और जताना आजकल लोगों को नहीं है। सो वो वाला चीज आ जाता है कि हाँ लेते हैं हम। अब दे हैव एक्चुअली, आपने देखा है ना, नाम बदल दिया है कि ये तो वो अपनी बेटी को दे रहे हैं।
0: वो तो है, और दे तो बेटी को ही रहे होते हैं। ये बात अलग ये हो जाती है कि भाई शोशाबाजी है या वाकई बेटी को चलाने को मिलती है कि नहीं, इज ऑल्सो अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट या आई थिंक ऑल सेड एंड डन, गिफ्ट जो बेटी को दिया जाए इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो डाउरी में ही और ऐसे दहेज टाइप में दिया जाए तो नहीं यार, ऐसे नहीं होता यार, नहीं अंतरा, नहीं ना।
2: है ना, गवर्नमेंट रूल बना दो तो मजा ही आ जाए।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: भाई आपने भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स बहुत ही निहायत ही खूबसूरत लड़कियों के, बट दे आर ऑल AI. मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस।
3: और इसी बात के खिलाफ पहले इंस्टाग्राम पे जब सारे मेकअप वाले लोग होते थे, फिल्टर्स यूज करते थे, तो सब लोग कॉम्प्लेक्स के मारे मरे जाते थे। और अब AI तो मतलब ऐसी परफेक्शन होती है कि लगता है हम पैदा ही क्यों हुए इस दुनिया में गैस।
2: And most of the times, and they are having insane amount of followers. भाई मतलब लोग पैसे दे दे के सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको कि ये तो बढ़िया है यार। हाँ। ये तो कितनी खूबसूरत है, एंड ऑल दोस थिंग्स। बट टेकिंग द एग्जैक्ट एडवांटेज ऑफ दैट इज दिस इंडियन 22 ईयर ओल्ड गाय, ओके, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट जो है। इसने क्या किया, ये यूएस गया भी नहीं, ये अपना पैसे बनाना चाहता था कि बाद में जाके यूएस में ये पढ़ाई कर सके, बट ये बैठा हुआ है इंडिया में। ओके, ही क्रिएटेड दिस वेरी वेरी हाईली सक्सेसफुल AI जनरेटेड इन्फ्लुएंसर बनाई इसने। ठीक है, बहुत सारे अमेरिकन कंजर्वेटिव्स जो है उनको अच्छा खासा पूरा लपेटे में इसके साथ में ले गया। सो ही इज एस्पायरिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, सैम नाम है इसका। एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो रहे थे जब ये प्रिपेयर कर रहा था एग्जाम्स वगैरह के लिए, फिर उसने यूज किया जनरेटिव AI टूल्स जैसे जेमिनाई वगैरह। एंड एमिली हार्ट नाम की ये फिक्शनल ब्लॉन्ड रजिस्टर्ड नर्स रिजेम्बलिंग जेनिफर लॉरेंस क्रिएट कर डाली। अब उसके बाद उसको प्रेजेंट किया एज अ पेट्रियोटिक MAGA सपोर्टर। और भाई उसके बाद से जो उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़े हैं, शी वेंट वायरल। ठीक है, उसके इंडिविजुअल रील्स जो है वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज में जाते हैं, 10,000 फॉलोअर्स विद इन वीक्स, एंड ही मोनेटाइज दिस पर्सोना सब्सक्रिप्शन के थ्रू। 30 से लेकर 50 मिनट रोज का वो लगाता था एक कंटेंट अपलोड करने में, एंड ही अर्नड लाइक क्रेजी।
3: Wow, मतलब seriously, AI is changing lives. ऐसा ही होता है आजकल तो, हर चीज यूं फटाफट 2 मिनट में, इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मुझे बहुत डर है, मैंने पिछले भी शो में कहा था, मुझे सबसे बड़ा डर इस बात का है कि हमारे बच्चे, जो पता नहीं आगे जाके दिमाग होगा नहीं होगा, नहीं भी होगा, दिमाग के बिना भी पैदा हो जाएंगे तो भी जिंदगी में कुछ बन जाएंगे, क्योंकि AI तो चलाना आना है ना। सैड यार, रियली सैड।

0: कुछ समय पहले की बात है कि एक औरत ने अपनी शादी जी हाँ कैंसिल कर दी, क्योंकि जो होने वाला दूल्हा था वो बेसिक मैथ्स टेस्ट हार गया, फेल हो गया।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7। नो कमेंट्स।
0: नहीं, मगर ये नेक्स्ट लेवल की खबर है। मसी मैडनेस पर रिनुका अनंत्रा, ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट ऑल दी ऑफबीट खबरें फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो इंडियन ब्राइड है, इसने अपनी कैंसिल क्यों करी थी शादी? वेल, बिकॉज उसको ऐसा लगा था कि उसके माँ बाप ने उसकी लड़के की एजुकेशन के बारे में झूठ बोला था। ओके, एंड शी हैड ऑलरेडी अर्लियर सेड कि भैया मैं किसी इलिटरेट से शादी नहीं करूंगी, मेरे को एक सर्टन लेवल का आदमी चाहिए, चाहे मैं जैसी भी हूँ, बट मेरी ये एक रिक्वायरमेंट है। तो शादी करने से पहले, जब अभी मतलब पहुंच चुके थे शादी करने के लिए, वहां पर इसने बोला 15+6 कितने होते हैं जी? ओके, और हाँ मतलब 15 और 6 ऐड करके बता दे भाई। तो उसने बोला 17। ठीक है, अब फॉर ऑल दोज पीपल हु डोंट नो, आपकी शादी पे 21 बोलना, ठीक है, हो जाएगी शादी। तो फिर क्या हुआ, अब ये रसूलाबाद विलेज जो कानपुर के पास है अंतरा, तुम्हें तो पता ही होगा, वहीं की बात है ये। एंड जैसे शक हुआ, ये सब उसने किया, उसके बाद फेल हो गया वो, तो फिर वो ब्राइड तो बाहर चली गई, वेडिंग वॉज कैंसल्ड, और जो गिफ्ट्स और ज्वेलरी वगैरह थे पहले के, वो सब एक्सचेंज हो गए, वापस हो गया। बोला कि ऑनेस्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट दैन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तुम लोगों ने झूठ बोला, एंड दैट इज वाई वी आर वेरी अपसेट।
2: All said and done, मतलब शादी वाले दिन 15+6 क्या होते हैं, ये कौन पूछता है?
0: That is
2: not the point.
0: अच्छा, you have to look at the deeper reason. Come on, ऐसे नहीं।
2: I am also so you have to give us another, you know, दूसरा point of view भी तो देना चाहिए ना, एक ही point of view से थोड़ी ना बात करनी चाहिए। कोई मतलब sane बंदी आकर दुल्हन के जोड़े में आके बोले, पहले तो बता 15+6 क्या है, बता अभी।
0: और वो
2: 2+2,
0: और वो जिसने कहा था कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो 17 आंसर दे, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है।
2: अच्छा, वो नर्वस भी तो हो सकता है ना, इतनी ब्यूटीफुल होगी, वो नर्वस हो गया वो देख के,
0: ये शादी करा के रहेगी और मैं नहीं होने दूंगी ये शादी।
3: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो

0: मेरे को इसका फंडा कुछ समझ में नहीं आया, बट ठीक है अब कराया होगा इसने, चलो बताती हूँ।
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिक।
2: रेडियो मस्ती 24/7 गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए। जी हम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, 8 मई को आप पहुंचे हैं, और अगर आप इसका एनकोर सुन रहे थे या हैं तो ये है 9 मई। जी हाँ, सैटरडे
0: सैटरडे की शाम, और हाँ, कुछ
2: सैटरडे की शाम इस समय 8 बजने वाले हैं, मतलब यही मैं बता सकती हूँ और क्या बता सकती हूँ।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो भाई मेरे को ये बताओ रेणुका, ये आजकल ये जो डीएनए टेस्ट वगैरह ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गए है क्या, लाइक कोई भी करा सकता है?
2: हाँ बिल्कुल,
0: इज इट दैट?
2: बिल्कुल, देयर हैज टू बी अ रीजन, अ गुड रीजन, एंड बोथ पार्टीज हैव टू एग्री, फिर कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: Anyways, this man, he got furious, apparently, और क्योंकि जो वाइफ है, वाइफ तो जा चुकी, ठीक है, और ये बंदा कैमरे में पकड़ा गया क्योंकि वो ग्रेव पे जाके उसके ग्रेव के ऊपर लाठियां मार रहा है, बहुत ही गुस्से में।
2: क्यों?
0: हाँ, क्योंकि डीएनए टेस्ट जो है उसमें रिवील हुआ नन ऑफ द 6 चिल्ड्रन ही रेज्ड आर हिज।
2: खुद भी जीते जी मर जाएगा सोच सोच के, मतलब जब जिंदा थी तो करना चाहिए था ना, आपका ढिंडोरे अब तो ढिंडोरा ही बाजेगा ना, क्या फायदा बताओ।
0: मतलब I feel his pain, that is like बिल्कुल पूरा जो है हमारा, हमारी सांत्वना उसके साथ है, लेकिन जो उसके साथ थी वो तो नहीं है ना, और वो तो चली गई ना, और फिर वो डीएनए करा के फायदा क्या हुआ? और ये ऐसे मरने के बाद क्यों कराया?
2: सांत्वना इसके साथ है क्या? वो जो मरी थी उसका नाम सांत्वना था? वो भी तो नहीं थी इसके साथ, that's the whole point. मस्ती 24/7 गाइस, टू बैड 6 बच्चे, भाई किसी की तो शक्ल नहीं मिल रही थी तेरे से, तू पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे जब पैदा हुए थे तब करा लेता डीएनए, तू मतलब बीवी के मरने के बाद क्यों करा रहा है भाई? व्हाई
0: व्हाई व्हाई
2: व्हाई, व्हाट्स योर पॉइंट नाउ? व्हाट

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.

0: ओह माय गॉड अंतरा, मैंने तेरे को एक बात नहीं बताई. नाउ बिफोर वी लीव आई मस्ट टेल यू, यू नो व्हाट, कल शाम को आई गॉट द मैंगोज डिलीवर्ड फ्रॉम जीजी मार्ट. ओके, एंड आई एम टेलिंग यू, वो मैंगोज जिस तरह से वो हमें बता रहे थे कि उनके ऑर्गेनिक फार्म के मैंगोज हैं, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि जो खिले खिले आम यहाँ पे दिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं, तभी ये लोग बोलते हैं पहले बुकिंग कराओ और हम आते ही तुम्हारे घर में डिलीवर कर देंगे. यू नो हाउ इट इज. सो माय गॉड द टेस्ट, यू जस्ट कैन नॉट बीट इट. मैंने जिंदगी में ऐसे आम नहीं टेस्ट किया फॉर श्योर.
1: मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
2: मैंने तो आपसे कहा ही था, जब व्हेन आई ट्राइड देयर आर्म आई वाज लाइक दैट, आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड आई एंजॉयड एंड रिलिश्ड इट सो मच कि भाई मैंने तो ऑन एयर जाके बताया कि जीजी मार्ट ऑनलाइन से जाके आम मंगा लो, यू विल एक्चुअली नॉट रिग्रेट. जो और प्लस उनका जो उसमें वेबसाइट में भी लिखा हुआ है दो दैट उनका अगर दो से ज्यादा आम अगर थोड़े से वैसे खराब से निकलते हैं देन दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ इधर रिफंड कर रहे हैं या फिर उसको चेंज करने को. दैट इज ऑल्सो आई थिंक अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग पॉइंट. नॉट एवरीबडी डज
0: नोबडी
2: एस्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स.
0: एब्सोल्युटली ऑनलाइन ओनली इफ यू आर श्योर ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट विल यू एग्री कि भैया पहली बात तो कुछ उसमें गलत निकलेगा ही नहीं, और अगर निकला तो मैं वन टू वन उसी टाइम एक्सचेंज करूंगा, बिकॉज डेफिनेटली ये मेरा काम है ही नहीं. आई बिलीव इन क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट? एंड दैट इज जीजी मार्ट ऑनलाइन फॉर यू गाइज. जस्ट गो चेक आउट देयर वेबसाइट, वहां पर रजिस्टर कर लो अपना आईडी और उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट भेज दो ताकि हम आपको डिस्काउंट कोड दे दें, और डिस्काउंट कोड आते ही यू कैन ऑब्वियसली एंजॉय इट ऑलराइट एंड गेट डिस्काउंट. चलिए ओके, टेक केयर. एंड हम तो यहां से अब निकलते हैं और इस वादे के साथ कि हम बहुत जल्द वापस आएंगे. Desperado, Desperado, in this together we live or we die. ओह क्या बात है, इन दिस वर्ल्ड वी लिव टुगेदर और डाई. ये टेशर के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अंतरा, तुमको?
2: बिल्कुल. तो हम में रेणुका विल सी यू वेरी वेरी सून. हम अच्छा तो हम चलते हैं,
0: इस बारे में हम अभी बात करेंगे, हम बात करके रिजॉल्व करके आगे बढ़ेंगे लाइफ में.
2: नहीं, नहीं.

0: your passport to the world every Monday morning. From global headlines to a pinch of Bollywood spice.
1: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा केजी मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी,
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
4: क्या जी?
5: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
4: वाजी, क्या बात जी.
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
3: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than life. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना। रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
2: रहो। रात अकेली है
3: तो क्या हम तो

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। सह लिया बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया, अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ

सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे फोड़ देंगे।

0: एक जज्बा है, जुनून है, एक रुतबा है, फोर्स बगावत है, एक पागलपन है, शहादत है, एक दीवानगी है, फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज, ये 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा, तो चिल्लाओ।
1: जादू है, नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

0: चलें।
1: चलो।
2: रात अकेली है,
3: रात अकेली है तो क्या, हम तो आ

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है
2: जोश में रहो
3: हम सुन

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: वो है जो सबकी जगह ले सकती है।
1: तो कितनी भोली है।
0: और ये वो ही है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता।
1: प्यारी प्यारी है।
0: रेडियो मस्ती 24/7 विशेस ऑल द अमेजिंग मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।